0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
6: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
7: हजार 97.1 FM।
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: It's
8: music never sounded better.
9: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.

0: In other words, hold my hand.
1: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152, Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106, Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: Zabardast hits.
6: Music never sounded better.
2: Fazan 97.1 FM.
6: I love it.

सितम खुद देखे है खफा कोई, वफा भी करके है बुरा कोई, ऐसा भी करता है भला कोई। छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें, लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें, बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई।

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Get ready to move.
2: It's all about the beats. Wow,
3: Only Tune Super Hit Channel.
4: Fizz on 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ, बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: transfer, or vehicle rental, Rosid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
0: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम करदे ने, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी करदे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हां जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूँ कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
0: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
0: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम, या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
2: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
0: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
0: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एक्सप्रेस पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: Ready to move.
8: It's all about the beat.
9: Wow, FM.
10: Only tune Super Hit Channel.
11: Fizz on 97.1 FM.

0: Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.
1: ਮੁੰਡਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: This is a public service announcement.
8: The station.
9: That plays.
10: Foot tapping music.
11: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Fazan 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham.

97.1 FM. Back to back hip hop music.

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक रेडियो फजा 97.1 एफएम लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान आसिफ खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम। जी गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल किया था गहराइयों से खुश आमदेद कहते हुए। उन लोगों के लिए स्वागत है जनाब, उन समातों के लिए स्वागत है जिन्होंने इस वक्त मेरी ट्यून के 97.1 एफएम पे या फिर डैप पे या फिर हमारी ऐप पे। थैंक्स अलॉट जिन्होंने मुझे पहले से ट्यून किया हुआ था और कुछ ट्रैक्स से जो आप सुन रहे थे, ताकि आपकी जो मॉर्निंग है थोड़ी सी स्वस्थ हो जाए, थोड़ी सी एक्टिव हो जाए, उसके बाद मेरी काफ़ी सारी बातें आपको सुननी पड़ती हैं। बहरहाल जी आपका बेहद शुक्रिया 97.1 एफएम ट्यून करने का। डैप आप हमें फजा के नाम से सर्च करते हैं उसके बाद सुन सकते हैं। इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि ऐप को डाउनलोड करने का जो तरीका है वो तरीका जनाब कुछ ऐसा है कि आप जाएंगे गूगल प्ले पे, प्ले स्टोर पे, वहां जाके टाइप करेंगे रेडियो फजा 97.1 एफएम ऑफिशियल या फजा रेडियो, तो फिर वहां पे जनाब आपको ऐप मिलेगी। थोड़ी सी साइन बता देता हूँ, फजा लिखा हुआ उसके सामने आएगा, गोल पेज या येलो कलर में, डिपेंड करता है कि आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन कैसी है। और उसके बाद पर्पल कलर का बैकग्राउंड होगा, उसको डाउनलोड कीजिए, गेट कीजिए। जब आप उसको प्ले करेंगे तो गुड मॉर्निंग नॉटिंघम ये सुनने को आपको मिलेगा।

अगर आप भी आप लोग भी मेरी तरह बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं और एक्टिव हैं और गुड मॉर्निंग नॉटिंघम का खूबसूरत सफर एंजॉय कर रहे हैं अपनी अपनी मंजिल मकसूद पे जाते हुए, अरे मंजिल मकसूद से याद आया, एक बार फिर से मैं बताता चलूँगी, अगर आप ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आपसे गुजारिश है कि ऑलवेज फास्टन योर सीट बेल्ट एंड डू नॉट यूज योर मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग।

बिल्कुल जनाब, टॉपिक एक बार फिर से अनाउंस कर देते हैं, आपके जो मैसेजेस हैं वो भी थोड़े साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक मैसेज आया है जनाब, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज और अंदाज, जबरदस्त जनाब, थैंक यू वेरी मच। ऊपर वाले की ज़ात आपको हमेशा अपने हिफ्ज व अमान में रखे, थैंक्स अ लॉट। और इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम जहाँ पे अक्सर ये सोचते हैं, ये डेवलप करते हैं अपने माइंड के अंदर कि हमारे पास जो इस वक्त मौजूदा हालात में हमारे नॉटिंघमशायर में, हमारी कम्युनिटी में, यूके में, इंग्लैंड में, वट एवर, जहाँ भी हम साउथ एशियन जो हमारी नेशंस हैं, जितनी भी आबाद हैं, हमारे अंदर खामियां और खूबियां हर इंसान में मिक्स होती हैं और ऊपर वाले की ज़ात ने इसको बैलेंस करने के लिए ही किसी को खूबियां दी हैं, किसी को खामियां दी हैं, ताकि एक दूसरे की जो जली चुपड़ी बातें हैं उनको हम कवर कर सकें। सामने आज का जो टॉपिक है बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक बार फिर से मैं रिवाइज किए देता हूँ आपको।

टॉपिक है जी कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट के साथ यानी पूरे एतमाद, बेसिकली कॉन्फिडेंस एक और चीज़, कॉन्फिडेंट होना, पूरे एतमाद होना। तो आज हम डिस्कस करेंगे जी पूरे एतमाद लोग कैसे होते हैं, इनकी क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, लाइफ में हम कैसे आगे जाते हैं, या इन लोगों को कौन से ऐसे सिनेरियोज मिलते हैं, क्या इनके सरकमस्टेंसेज होते हैं। सबसे बड़ी बात है जो पूरे एतमाद लोग होते हैं, बड़े स्पॉन्टेनियसनेस होते हैं, इनकी स्पॉन्टेनियसनेस का राज क्या है, वो जनाब इनकी पूरे एतमादी है। अगर आपकी भी कोई विचार है, कोई राय है इस टॉपिक के हवाले से, तो फिर 01157100971।

जी तो लिसनर्स, मैं कहाँ था, मैं यहीं था, कहीं भी नहीं था, आप लोग मेरे साथ थे। और गुड मॉर्निंग नॉटिंघम का ये खूबसूरत सा सफर है, गुड मॉर्निंग नॉटिंघम का ये प्रोग्राम है, ऑल द वे फ्रॉम नॉटिंघम 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। बात में कर रहा था कि पूरे एतमाद लोगों की खसलतें क्या है, उनकी खूबियां क्या हैं, और यही आज का हमारा टॉपिक है।

जी तो लिसनर्स, मैं ये बात कर रहा था आप लोगों से, अपने सामीन से, थोड़ा सा आई थिंक हमारी स्ट्रीम में ज़रा हल्का सा इशू आया था, स्ट्रीम को थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगा, या सिग्नल्स का कोई इशू था, लेकिन बहरहाल आई एम नाउ ओके एंड इफ यू आर लिसनिंग मी ऑन रेडियो फॉर 97.1 FM, सो कीप मैसेजिंग मी इन गुड मॉर्निंग नॉटिंघम, योर वन एंड ओनली शो, जहाँ पे आप 01157100971 का नंबर सेव करेंगे, व्हाट्सएप पे जाके मुझे मैसेज करेंगे, या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं।

0: बात को आप कड़ी को जोड़ते हैं और कड़ी के जोड़ने के साथ साथ आपको ये भी बताते हैं, चलो कड़ी तोड़नी भी पड़ेगी क्योंकि हमारे दरमियान हाइल होगी कमर्शियल ब्रेक। तो मैं बात कर रहा था कि उन लोगों की, उन व्यक्ति की, उन बच्चों की जो जाहिर तौर पे हमें साउथ एशिया कम्युनिटी में हमें वो बहुत ज़्यादा पूरे इत्मीनान नज़र आते हैं, उनमें सबसे बड़ी जो क्वालिटी कहाँ से शुरू होती है, उनकी खूबियाँ कहाँ से शुरू होती हैं कि जब वो शहर में आते हैं, बड़े सिटीज़ में जैसे मुंबई में आ गए, दिल्ली में आ गए, इस्लामाबाद में, कराची में चले गए, लाहौर में चले गए, या कहीं भी मतलब बड़े कैपिटल में जाकर उन्होंने अपनी स्टडी कंटिन्यू की, वहाँ पर उनको चैलेंजेस का जो सामना करना पड़ता है वो अपने आप को खुद सेल्फ कंपैरिजन में ले जाते हैं। जब इंसान सेल्फ कंपैरिजन में जाता है ना, मतलब लड़कपन की उम्र में, वही सेल्फ कंपैरिजन आपका मैच्योर उम्र में आके आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बनता है। अब इस दोनों को रिलेट कैसे करेंगे, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हमारे दरमियान हाइल होगी और नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा पर्सनैलिटी ऑफ द डे, लेकिन टॉपिक को भी साथ साथ लेके चलेंगे, बड़ी इसमें लॉजिक्स हैं और अच्छी सी रिसर्च भी आपके सामने आएगी। और आज के दिन जितने भी पुरएतमाद लोग हैं यानी कॉन्फिडेंट पीपल हैं, वॉइस लोग हैं बेसिकली, वो इस चीज़ को समझेंगे और आगे हमारी कम्युनिटी को एक खूबसूरत।
1: जरा ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
4: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन, ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

तो लिसनर्स, ये वेलकम, ये स्वागतम, ये सारी चाओ भगत, और ये उनको बुलाने का अंदाज ही उन समातों के लिए है, उन लोगों के लिए, उन व्यक्ति के लिए जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया 97.1 FM पे। जो प्रेक्षक वापस हमारे साथ हैं उनको वेलकम बैक।

जनाब बात हम कर रहे थे पूरे एतमाद लोगों की, कॉन्फिडेंस बेसिकली क्या होता है, एतमाद क्या होता है। डेफिनेटली एतमाद एक डिफरेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी पूरे एतमादी एक ऐसा टॉपिक है जो रिलेट करता है ह्यूमन के साथ, जो रिलेट करता है लोगों के साथ, जिसमें इंसान की इंसानियत का होना बेहद ज़रूरी है। इसको भी आगे लेके डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि ब्रेक से पहले कि ऐसे जो साउथ एशियन लोग हैं जो दुनिया में मुख्तलिफ जगह पे अपने लोहा मनवा रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, स्मार्ट तरीके से, एक्टिव तरीके से काम करते हैं, वो बेसिकली पूरे एतमाद लोग हैं। अब उनकी परवान चढ़ने की जो बात थी, जो कथा थी, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जनाब जब वो बात हुई थी कि जब गांव से शहर आते हैं और अपने नए कोलीग्स को देखते हैं और फिर वो अपने आप को सेल्फ कंपैरिजन में लेके जाते हैं कि मेरे साथ ये है तो इन लोगों के साथ ये है। डेफिनेटली उनका चाल डाल, उनकी बॉडी लैंग्वेज हर डिफरेंट होती है, और जो विलेज से यानी जो गांव एरिया से, यानी जो तकरीबन आप कह लें रिमोट एरिया से जो लोग बड़े शहरों में पढ़ने के लिए आते हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उनको मिलती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, वहाँ से शुरू होता है। जब वो कंपैरिजन करते हैं ना अपने आप का, लड़कपन की उम्र में वो कंपैरिजन है, सेल्फ कंपैरिजन जिसको आप कहते हैं कि मुआजना करना अपने बाकी जितने भी लोग हैं, बाकी जितनी भी कम्युनिटी है उनके साथ, और बड़े होके इसी चीज़ को चेंज कर लें, या इसका मायने चेंज हो जाएगा, या इसकी एक वर्ब इसमें ऐड हो जाएगा, या ये एक डिफरेंट वर्ड लेके सामने आ जाएगा, यही बेसिकली आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती है, जिसको आप खुद एहतसाबी कहते हैं। अब जब वो कंपैरिजन करेंगे तो फिर वो अपने कंपैरिजन को लेके चलते हैं साथ, यानी अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं इस तरह का नहीं बन सकूंगा। हमारे पास बचपन से गालियां मिलती आई हैं, बड़ी प्यार वाली गालियां, माँ बाप इस उम्र में पहुंच जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, फिर उनको सपोर्ट भी करना है, छोटे बहन भाई उनको पढ़ाना भी है, और उसके बाद एक ख्वाब देखते हैं, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए फिर जनाब नॉटिंगम पे तशरीफ ले आते हैं वर्कर वीज़े पे, जिस तरह भी जैसे भी हम लोग आते हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे सिविलाइज्ड लोग मिलते हैं, फिर अगेन नया कंपैरिजन शुरू होता है, फिर खुद एतमादी आहिस्ता आहिस्ता जो स्टेज डेवलप होती है, यानी लड़कपन में जो खुद एतमाद लोग होते हैं स्पेशली हमारे साउथ एशियन में, वो क्या करते हैं कि वो सबसे पहले सेल्फ कंपैरिजन करते हैं, अपना मुआजना करते हैं बाकियों के साथ। जब वो लोग 20-23 से अबव जाते हैं या 30 से नीचे रहते हैं तो वो लोग फिर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करते हैं, और जब वो मैच्योर हो जाते हैं यानी अबव 30-31 से लेके 40-45 तक जो पूरे एतमाद लोग होते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं फिर वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, वो पूरे एतमाद लोग होते हैं, और ये बेसिकली एक पूरा सर्कल है। अब इनकी बेसिकली आप कह लें कि क्या सिम्टम्स हैं, क्या साइन है, और ये लोग किस तरह अपने आप को मोटिवेट रखते हैं। पूरे एतमाद लोगों में जनाब जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसके मुताबिक पूरे एतमाद लोगों में 8 बड़ी कॉमन निशानियां पाई जाती हैं जिनको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप भी इन विचारों से सहमत हैं या आपकी ये सोच मिलती है मेरी सोच के साथ, या आपकी सोच मेरी सोच के साथ मिलती हैं, तो फिर आपसे गुजारिश है कि फिर मैसेज कीजिए 1157100971 पे और शामिल हो जाइए हमारे साथ आज के टॉपिक में, विच इज़ पूरे एतमाद या पूरे एतमाद लोगों की निशानियाँ या सिम्टम्स, या उन लोगों की बेसिकली उन लोगों की जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन रहने वाली चीज़ है जो हमेशा उनके पास रहती है, वो कौन कौन सी है। 8 चीज़ें जो हमेशा उनके पास रहती हैं। सबसे पहली चीज़ है जी, पुरएतमाद लोग तारीफ़ के भूखे नहीं होते। बिल्कुल जनाब, पुरएतमाद लोगों में सबसे जो पहली क्वालिटी आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंट लोगों में सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है, वो ये होती है कि ये सिर्फ काम करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, एक्टिव रहते हैं, लेकिन कभी कभी अगर हार्ड वर्क करना पड़ भी जाए तो फिर घबराते बिल्कुल भी नहीं है, और स्मार्ट वर्क के साथ ही, हार्ड वर्क के साथ ही, यानी छोटे तरीके से रास्ता निकालना और एट द एंड काम सक्सेसफुली कंप्लीट होना चाहिए। ये जनाब सिचुएशन होती है अपने काम को अपनी मेहनत से सर अंजाम देना और उसके बाद किसी की तारीफ का बिल्कुल ना इंतज़ार ना करना। अक्सर कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि यार दुनिया मुझे माने, दुनिया मेरी तारीफ़ करे, तब ही मैं सामने आऊँगा। इंट्रोवर्ट टाइप लोग होते हैं, लेकिन वो भी बड़े ज़हीन, बड़े चालाक और बड़े हौसला अफजा लोग होते हैं बेसिकली। तो कुछ लोग जो लोग तारीफ़ के भूखे नहीं होते बेसिकली, तारीफ़ उनकी ग़ज़ा होती है बेसिकली, वो तारीफ़ के साथ चलते हैं। अगर हम पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें इस चीज़ पर,

अगर हम पॉजिटिव सामीन क्रिटिसिज्म करें इस चीज पे तो फिर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म क्या होता है? पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इस चीज पे ऐसे आएगा कि उनको तारीफ की जरूरत होती है बेसिकली, क्योंकि अगर वो लोग तारीफ को नहीं पाएंगे तो वो अपने काम को एक्सेस नहीं कर पाते, यानी अपने काम को समझ नहीं कर पाते कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। तो फिर ऐसे लोगों को, अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं ऐसे ही, आपके मैनेजमेंट में ऐसे लोग आते हैं, तो फिर आपसे गुजारिश है कि बहुत ख़ास ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे लोगों से आप अच्छे रिजल्ट तवक्को करते हैं और अच्छे रिजल्ट आप ले भी सकते हैं।

रिजल्ट ओरिएंटेड होना बेसिकली एक बड़ी फायदेमंद चीज है उन लोगों के लिए जो लोग बजाहिर किसी को अगर आप ये कह लें कि कोई काम करते हुए नजर नहीं आते या लोग ये समझते हैं कि यार ये काम नहीं कर रहे, तो एक बार हल्की सी उनकी तारीफ करके देखें, हल्की सी उनके काम की तारीफ करके देखें कि यार यू हैव डन वेरी वेल एंड यू आर डूइंग ग्रेट, तो जब ये चीज उनको मिलेगी

जब ये चीज़ उनको मिलेगी तो फिर डेफिनेटली वो आपको रिजल्ट भी देंगे और फिर उसके बाद जो उनकी वर्किंग प्रोग्रेस होगी वो भी तेज़ हो जाएगी और फिर उनके आगे जो एक स्पेशल चीज़ आ जाएगी, यानी जो स्पेशल सिनेरियो उनके सामने आ जाएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। उस डिफरेंट सिनेरियो में वो लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे, हो सकता है वो उन 72 या 73 व्यक्ति में से हों जो ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं, मेहनती लोग हैं, मेहनत वर्कर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़े से दिमाग में अगर कमज़ोर हैं तो फिर जो पूरे एतमाद लोग होते हैं, यानी अगर आप कह लें कि अगर आपका 10 से 11 बंदों का स्टाफ है तो उसमें एक बंदा आपका बहुत अच्छे तरीके का ना सेल्फ कॉन्फिडेंट एम्प्लॉय होगा, उस बंदे को आप अपॉइंट कर लें या उसकी ड्यूटी ये लगा दें कि यार बाकी स्टाफ को आपने मैनेज करना है या आपने बाकी स्टाफ को हौसला अफजाई देनी है। तो ऐसे जो लोग होते हैं बहुत परफेक्ट होते हैं क्योंकि उन्होंने जो सिनेरियो गुजारा होता है वो सेल्फ कंपैरिजन के एक ऐसे दौर से गुजरे होते हैं जिससे बाकी स्टूडेंट्स जो उनके साथ के हैं या जो बाकी लोग हैं वो उस दौर से नहीं गुजरे होते। उन्होंने अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत ही अच्छे तरीके से की होती है, इसलिए उनको पता होता है कि अब ये जो 9 लोग हैं या 10 लोग हैं इनका मेंटल लेवल क्या है। तो ये ना पूरे एतमाद लोग हमारे पास अक्सर रहते हैं, साउथ एशियन कम्युनिटीज में ये बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। ना उसके बाद इसकी दूसरी निशानी क्या है, सेकेंड सिम्टम्स एंड सेकेंड मेन साइन ऑफ जो पुरेतमाद लोग हैं, पुरेतमाद लोग जो सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ये किसी से इजाज़त तलब नहीं करते बिल्कुल जनाब। ये अगर आप देखें हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं जो स्पेशली हमारे नॉटिंगम में देख लें या कहीं भी अपने एरियाज में देख लें, जो बिजनेसमैन है जो अच्छे तरीके से काम करते हैं, मेहनत कर रहे हैं और मुख्तलिफ कंप्लीट कम्युनिटी को साथ लेके चल रहे हैं, यानी एक लीडरशिप की क्वालिटी रखते हैं, ये लोग अगर एम्प्लॉई हैं तब भी, अगर किसी के मातहत काम कर रहे हैं तब भी, ये लोग किसी से किसी किस्म की कोई इजाज़त तलब नहीं करेंगे, यानी परमिशन नहीं लेंगे। वो काम करेंगे, काम करके रिजल्ट जनरेट करेंगे और उसके बाद गाइडलाइन लेंगे, कभी भी वो आपसे परमिशन नहीं लेंगे। गाइडलाइन इज अ डिफरेंट थिंग, परमिशन इज अ डिफरेंट थिंग। जब आप अपने किसी एम्प्लॉय को या अपने मैनेजमेंट में काम करने वाले किसी भी पर्सनल को या स्टाफ को अगर आप परमिशन देते हैं या वो आपसे इजाज़त तलब करते हैं तो परमिशन के साथ आपको फिर सिखाना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वक्त का ज़्याया आता है, लेकिन आजकल के दौर में क्योंकि वक्त की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है तो फिर ऐसे लोगों को इंतखाब कीजिए जो कभी इजाज़त तलब ना करें, वो आपसे गाइडलाइन लें। और अगर आप ऐसे हैं कि आप इजाज़त तलब करने वाले हैं तो फिर अपनी मेंटली लेवल थोड़ा सा चेंज कीजिए और आप ये कोशिश कीजिए कि आप भी इतनी मेहनत इतने स्मार्ट तरीके से करें, या मेरी तरह बिल्कुल अगर नकारा से हैं तो फिर आपसे गुजारिश है कि आप भी ऐसे लोगों में शामिल हो जाएं जो परमिशन नहीं लेते, गाइडलाइन लेते हैं।

पापी के जनाब खुद एतमादी और इस पे जो हम तीसरे सिम्टम्स की तरफ आते हैं, जो तीसरा साइन है, उसके बाद हम सेगमेंट की तरफ आएंगे जो है पर्सनैलिटी ऑफ द डे। तीसरा साइन है जी, ये लोग कभी भी दूसरों से हसद नहीं करते, यानी ऊपर वाले की तकसीम पे गिला नहीं करते, यानी कभी भी ये नहीं देखते कि यार इसको इतना मिला हुआ है तो मुझे इतना क्यों मिला। बड़ी कुरान पाक की एक बड़ी सारी आयात ही बहुत अच्छी हैं और एक बड़ी कॉमन आयत है, वत इज्जु मन तशा वत जिल्लु मन तशा, कि अल्लाह ही बेहतर जानता है जिसको वो इज्जत देता है जिसको जिल्लत देता है। तो सामीन, हमसे ये गुजारिश है, मैं अपने आप से शुरू करता हूँ कि हम अच्छी कम्युनिटी कैसे बना सकते हैं कि जब ऊपर वाला तकसीम कर दे तो फिर उस पर हसद करने के बजाय उसकी तारीफ करें, सुभान रब्बी अलाला, या तेरा लाख लाख शुक्र है, तो कितना अजीम है तूने इस जैसे इंसान पैदा किए हैं, इतने कामयाब लोग पैदा किए और इस कम्युनिटी में पैदा किए और मुझे इन लोगों के ज़माने में पाया है। इस तरह की अगर दुआ करें तो आपके अंदर से, अगर जैसे मेरे अंदर से कोई हसद का एलिमेंट है या आपके है, तो वो भी निकल जाएगा और आप भी पूरे एतमाद लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। चौथी जनाब ज़बरदस्त एक बात है, क्योंकि मैं टॉपिक को क्लोज भी करना है, नेक्स्ट सेगमेंट हमारा आइडियाज़ का है, उसमें यह है कि पुरेतमाद लोग कभी भी रियलिटी से, हकायक से नहीं घबराते। ना व्हाट इज़ द रियलिटी, जो कुछ भी आउटकम आ रहा है उससे वो सीखेंगे। एक्सपेरिमेंट तजुर्बा मेक्स मैन परफेक्ट, इस चीज़ पे बड़े पक्के तरीके से चलते हैं और कोशिश करते हैं कि जो माजी में गलतियाँ हो चुकी हैं वो दोबारा गलतियाँ ना हों, और अगर कुछ रियलिटीज आ रही हैं तो उनको वो फेस करने के काबिल होते हैं। ऊपर वाला उनको हिम्मत देता है और वो हिम्मत जुटाते हुए लोगों को माशरे में साथ लेके चलते हैं।

पास किया, छोटी उम्र में कैसे खुद एतमादी स्पेशली और जिन अलूम में उनको महारत हासिल करनी थी उन्होंने महारत हासिल की, उसके बाद दुनिया को एक नई दिशा दी। लेकिन एक ज़बरदस्त बात उन्होंने ये कही हम सब के लिए कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हम अगले आइंस्टाइन हो, हमने सिर्फ उतना करना है कि हमारी ज़ात में जितना समाया जा सके, जितना बेस्ट हो, ताकि हम कम्युनिटी की खिदमत कर सकें या सर्विसेज में जा सकें। सामिन गुड मॉर्निंग, नॉटिंघम का ये खूबसूरत सफर अपनी मंजिल की तरफ तमाम दुआ है। खुद एतमादी आज का हमारा टॉपिक है, खुद एतमाद लोग कैसे होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है। चार सिम्टम्स उनकी बाकी रह चुकी हैं, लेकिन अभी हमारे दरमियान हाइल होगी कमर्शियल ब्रेक। उससे पहले आपको ये बताता चलूं कि 9015710971 ये वो नंबर है जिस नंबर पे आप मुझसे रब्ता करेंगे, मैसेजेस करेंगे और एहसास दिलाएंगे अपने होने का।

0: हमारे बाकी ट्रांसमिशन के बारे में जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट विच इज रेडियो फजा डॉट को डॉट यू के अलावा लाइव डॉट रेडियो फजा डॉट को डॉट यू के एड्रेस बार में आप टाइप करेंगे तो लाइव स्ट्रीमिंग पे भी हम लोग हम आपके साथ अवेलेबल होंगे। और नॉटिंघम शायर को खूबसूरत से प्यारे से माइंड सेट रखने वालों को एक बार फिर से दिल की अथाह गहराइयों से गुड मॉर्निंग नॉटिंघम।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक, रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान आसिर खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल की अदाकाराइयों से खुश आमदीद कहते हुए जो लोग नए जुड़े हैं जनाब इस वक्त हमारे साथ, आपको वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। अपने दिन को तरोताजा रखिए, उम्मीद वासिक है कि ऊपर वाला हमेशा आपको अपने हिस्सों मान में रखेगा। तो जनाब टॉपिक है आज का, पूरे एतमाद लोग कैसे होते हैं। चार सिम्टम्स की हम डिस्कस कर चुके हैं और बाकी चार सिम्टम्स कौन सी हैं वो आपके सामने रखे देते हैं। और जनाब कुछ ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट भी मेरे पास मौजूद है, डिस्कशन भी चल रही है साथ साथ। जनाब पांचवा जो सिम्टम है वो सिम्टम है कि ऐसे लोग इनकार करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाते, यानी हेजिटेट नहीं होते किसी चीज़ में ना करना। अक्सर लोग डिस्कशन में लेके आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ पर ना नहीं कर सकते। ना करना एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ होती है और पूरे एतमाद लोगों की सबसे बड़ी एक ये निशानी भी है कि वो जो काम नहीं कर सकते, जो उनके एक्सेस में नहीं है, वो ये सोचते हैं कि अगर इस काम के करने से मेरे एम्प्लॉयर को या मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ उसको मेरे काम करने से लॉस होगा, तो वो फिर स्टेप बैक कर जाते हैं ताकि जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी है या जो भी एम्प्लॉयर है उसको नुकसान ना पहुंचे उसके हवाले से। क्योंकि डिस्कशन हमारी होती है मोस्टली मोटिवेशन के हवाले से। गुड मॉर्निंग का मतलब एक सफ़र ही ऐसा है कि जिसमें आपने पूरे दिन के लिए अपने आप को एक्टिव रखना होता है, स्वस्थ रखना होता है और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। ये चीज़ें डिस्कशन में आती हैं और ऐसे ही लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आप भी अगर ऐसे विचार रखते हैं या आप ऐसे विचारों के बारे में सोचते हैं तो फिर रब्ता कीजिए स्टूडियो के लाइव व्हाट्सएप नंबर पे, विच इज़ 01157100971।

उसके बाद जनाब ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि जनाब जो छठी निशानी होती है, जो मेन सिम्टम है इनका, छठा यानी सिक्स सिम्टम ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल या जो पुरेतमाद लोग हैं उनका, वो ये है कि ये छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, यानी उन पे इशू बनाना या उन पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना इनको पसंद नहीं होता। ये हमेशा अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है इन चीज़ों की वजह से, तो फिर वो अपने आप को उन चीज़ों से दूर कर देते हैं और छोटी छोटी बातों को लेके मेन मुद्दा नहीं बनाते या मेन किसी टॉपिक में नहीं बढ़ते। कुछ लोग होते हैं ना जो बड़े लीचड़ किस्म के होते हैं, कुछ ऐसे इंसान होते हैं डेफिनेटली, जहाँ पे खूबियाँ हैं वहाँ पे खामियाँ भी हैं, छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं या डीप जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कामयाबी और सक्सेस देखना चाहते हैं तो पुरएतमाद लोगों के इसमें शामिल हो जाइए और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखिए। जब आप इग्नोर करना सीख लेंगे तो फिर बड़े बड़े मसले यानी बड़े बड़े मसाइल खुद ब खुद ही हल हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं रहेंगी। उसके बाद सातवीं बड़ी निशानी उनकी ये है कि ये जो चेंज होती है यानी ये तब्दीली गलतियों और नए तजुर्बों से भी नहीं घबराते। कोई नया एक्सपेरिमेंट करना है यानी जिस जगह पे आप ये सोचते हैं कि ये काम मेरा नहीं है, वहाँ पे इन लोगों की ये निशानी भी होती है कि इनकी डीप सोच में एक चीज़ ये भी आ रही होती है कि अगर यार ये कर लूँ तो हर काम में सीख सकता हूँ, डेफिनेटली अगर हर काम में सीखूँगा तब भी मैं आगे लोगों को बता सकूँगा कि आपने ये काम कैसे करना है, या अगर वो ये काम कर रहे हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको ये पता चलेगा कि ये काम ठीक हो रहा है या नहीं।

तो लेंगे लिसनर्स, हमारी लास्ट जो निशानी है, जो सिम्टम है, जो साइन है पुरेतमाद लोगों का, वो ये है कि पुरेतमाद लोग किसी की मदद के बगैर ही आगे बढ़ते हैं, यानी किसी की हेल्प इनको दरकार नहीं होती। जैसे कि मैंने शुरू में कहा ना, ये गाइडलाइन लेते हैं, परमिशन नहीं लेते, तो सिर्फ ही गाइडलाइन लेते हैं और गाइडलाइन के साथ रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, ताकि नई चीज़ों को अडॉप्ट कर सकें और नई चीज़ों को सीखने का इनमें बड़ा एक हौसला होता है, जिसकी वजह से किसी की मदद किए बगैर ही, यानी किसी की मदद लिए बगैर ही ये आगे बढ़ते जाते हैं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने किसी की मदद नहीं करनी या आपने किसी को कभी भी किसी सिचुएशन पर समझना नहीं है, किसी सिचुएशन पे समझ नहीं, आपने ये कोशिश करनी है कि हमेशा लोगों की मदद करें। लेकिन आपकी अगर कोई मदद नहीं करता या आपकी गाइडलाइन नहीं मिलती, तो इसका मतलब यह है कि अगला बंदा आप इतना इत्माद कर रहा है कि उसे ये पता है कि आप ये कर लेंगे। सो ऐसे लोग प्लेयर होते हैं, उनको जैसा भी ग्राउंड मिले वो खेल लेते हैं, और प्लेयर्स को हमेशा लोग बड़े पुरेतमाद तरीके से देखते हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है और लोगों का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करते हैं। तो ये जनाब 8 सिम्टम्स थी जो आज की डिस्कशन में हमने डिस्कस की पुरेतमाद लोगों के हवाले से। सेगमेंट है जनाब हमारा फिजा आइडिया का, और आज का आइडिया क्या है बताते हैं आपको। जनाब आज का ज़बरदस्त आइडिया मेरे पास मौजूद है, और जो लोग इस आइडिया से तसल्ली करना चाहते हैं, बेसिकली ये सोचना चाहते हैं कि हम आज का जो है क्या उससे क्या सीखेंगे, रहिए मेरे साथ 97.1 FM ट्यून करने का बेहद शुक्रिया।

जी तो लिसनर्स एंजॉय कीजिए जबरदस्त ट्रैक, मगर राइट नाउ हार्डली कोई बहुत ही कम समय बचा है मेरा और आपका, यानी समय हुआ जाता है समाप्त आज के गुड मॉर्निंग नॉटिंघम का। अपने मेजबान आसर खान को दीजिए इजाजत, कल नए टॉपिक नए डिस्कशन नए मोटिवेशनल सब्जेक्ट्स के साथ रहेगी आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM, स्टे मोटिवेटेड स्टे एनर्जेटिक और बेहतरीन बनाइए अपने दिन को, पूरे तमाम लोगों में नजर आने की कोशिश कीजिए और अगर आप हैं तो फिर बाकियों को अपने साथ लेके चलिए। गुड बाय गुड बाय गुड बाय।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंकिंग रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: FM के साथ हर आवाज एक नई कहानी का आगाज।

Okay. वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सभी सुनते हुए समातों को खुश आमदीद। डियर लिसनर्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट हमेशा की तरह आज ये ज़ैनब फातिमा, और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम दीवा डायलॉग, जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM पे। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि रेडियो फजा 97.1 FM दैट ब्रिंग्स इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एंड एनर्जेटिक वाइब्स इन योर लाइफ। सो वेल लिसनर्स, कमर्शियल ब्रेक से पहले हमने एक डिबेट स्टार्ट की थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्किल एंड डिग्री। सो अब जरा इस इंटरेस्टिंग डिबेट की जाने बढ़ते हैं। सो फ्यूचर में डिग्री इंपॉर्टेंट होगी या स्किल? एक्चुअली दोनों का अपना रोल है, लेकिन डिग्री आपको नॉलेज और एकेडमिक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, पर वहाँ वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयज प्रैक्टिकल एबिलिटीज भी देखते हैं। सो मिसाल के तौर पर कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी, टाइम मैनेजमेंट। सो ये वो तमाम तर प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ हैं जो आप जब भी किसी प्रैक्टिकल जगह पर जाते हैं, मिसाल के तौर पर किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी वर्क प्लेस में जाते हैं, तो वो लोग आपकी डिग्री के साथ साथ आपकी इन तमाम तर एबिलिटीज़ को भी देखते हैं। इसीलिए अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ डिग्री कंप्लीट करके रुक जाए और न्यू स्किल्स डेवलप ना करे तो उसको अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम मिलेंगी। बेस्ट अप्रोच ये है कि आप डिग्री के साथ साथ स्किल पर वर्क करें, और अगेन जैसे ही आप कोई भी स्किल हासिल कर लेते हैं तो आप एक्सपीरियंस की तरफ जाएं। ये कॉम्बिनेशन फ्यूचर करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, और इस कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हुए आप एक बहुत अच्छी सी जॉब हासिल कर सकते हैं। सो वेल लिसनर्स, अब हो सकता है कि आपकी ये कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक दूर हो चुकी हो कि डिग्री इम्पोर्टेंट है या स्किल। सो दोनों अपनी जगह अहमियत रखते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप जस्ट अपने स्किल पर वर्क करें, अपनी डिग्री को कंटिन्यू ना करें। आपको दोनों को साथ लेकर चलना ज़रूरी है, क्योंकि अब आने वाला जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, और मे भी हो सकता है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इससे भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाए। सो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डिग्री को कंप्लीट करें, डिग्री भी हासिल करें, और साथ ही साथ आप इस चीज़ के ऊपर भी रिसर्च करें कि करंटली कौन से स्किल्स हैं जिन पर आजकल काम हो रहा है। और अब तो वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, तो आप थ्रू इंटरनेट बहुत सारे स्किल्स इजीली हासिल कर सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं जिनकी मदद से आप कोर्स भी हासिल कर सकते हैं, आपकी मालूमात में भी इजाफा हो सकता है। सो अब लगता है हमारे लिसनर्स की ये डिबेट और ये कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी। वेल लिसनर्स, आपका क्या कहना है इस हवाले से कि आप डिग्री को ज़्यादा प्रेफर करते हैं या फिर स्किल्स को? उसके लिए 0115710091 आप इस नंबर के थ्रू हमें बता सकते हैं। सो अब ज़्यादा बात करते हैं कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग एंड ग्लोबल वर्क। फ्यूचर ऑफ वर्क का एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्लोबल वर्क फोर्स। सो बेसिकली आज पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इस तरह की बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ में रहने वाले फ्रीलांसर्स, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उन तमाम तर कंट्रीज़ के क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। सो अब वो किस तरह से काम कर रहे हैं? ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग, प्रोग्रामिंग, विजुअल असिस्टेंस, और भी बहुत सारे इस तरह की सर्विसेज हैं जो कि वो लोग ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट ये है कि फ्यूचर में कंपटीशन सिर्फ आपकी सिटी के लोगों से नहीं होगा, एक्चुअली आपका कंपटीशन ग्लोबली हो सकता है, यानी दुनिया एक तरफ से ग्लोबल वर्क प्लेस बनती चली जा रही है। सो इस तरह से आपको अपने स्किल्स पर बेहद काम करना ज़रूरी है, क्योंकि अब अगर आप चाहते हैं कि आप एक बहुत अच्छी रिमोट जॉब हासिल करें, तो उसके लिए आप जो भी स्किल आपके पास मौजूद है उसमें आपके पास महारत होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन डिजिटल मीडिया में जब किसी क्लाइंट को कोई भी काम करवाना होता है तो वो हमेशा इस चीज़ को देखता है कि कौन सा ऐसा शख्स है जिसके पास ना सिर्फ स्किल है बल्कि उस स्किल में महारत भी है। सो अगर आप इन छोटी छोटी सी चीज़ों पर तवज्जो देंगे तो आप एक बहुत अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं, और आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि जिसके पास स्किल होता है वो कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट से नहीं डरता, क्योंकि वो हमेशा अपने लिए खुद ब खुद कोई ना कोई रास्ता बना लेता है।
सो लिसनर्स, अब जरा बात करते हैं कि फ्यूचर ऑफिस किस तरह के होंगे. इमेजिन करें फ्यूचर के ऑफिस मे बी ट्रेडिशनल डेस्क, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, या मे बी अ हाइब्रिड सिस्टम जहां कुछ दिन ऑफिस और कुछ दिन घर से काम होगा. या ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में एम्प्लॉयज डिफरेंट कंट्रीज में हों और मीटिंग हमेशा वर्चुअल हों. सो ये तो हमारी इमेजिनेशन है, फ्यूचर का तो फिलहाल हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते. लेकिन जिस तरह की करंट सिचुएशन है आजकल, जिस तरह से टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से वर्क कर रही है, तो माइट बी पॉसिबल कि फ्यूचर में हमारे ऑफिसेज मोस्टली फ्लेक्सिबल हों, जहां आपको इजीली ये अवेलेबिलिटी हो कि आप चाहें तो आप ऑफिस से काम कर सकें, या अगर आप चाहें तो आप बआसानी घर पर भी काम कर सकें. क्योंकि आजकल के दौर में फ्लेक्सिबिलिटी वर्क प्लेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बनती चली जा रही है. कंपनीज भी ग्रेजुअली रियलाइज कर रही हैं कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ ऑफिस में फिजिकली प्रेजेंट होने का नाम नहीं है, बल्कि इस चीज़ का नाम है कि आप जहां पर भी मौजूद हो लेकिन आप अपना काम अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहे हो. सो वेल लिसनर्स, ये तो जरा बातचीत हो गई टेक्नोलॉजी की, AI की, रिमोट जॉब्स की और ऑनलाइन डिजिटल मीडिया की. अब हम जरा बात करते हैं कि क्या ह्यूमन स्किल आज भी स्टिल मैटर करते हैं या नहीं. लेकिन उससे पहले हमें एक बहुत ही खूबसूरत सी सॉन्ग रिकमेंडेशन मौसूल हुई है, तो फिलहाल के लिए ये ट्रैक सुन लेते हैं और ट्रैक के उस पार दोबारा से अपने इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस टॉपिक के ऊपर बातचीत करके, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा डिफरेंट है और मोस्टली हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस तरह के टॉपिक्स की तरफ तवज्जो नहीं देते या फिर इनको इग्नोर कर देते हैं. सो सुनते हैं ट्रैक, ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात.

लिसनर्स, प्रोग्राम में वक्त हुआ है अभी एक अदित कमर्शियल ब्रेक का। सो जी आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार। सो तब तक के लिए आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें। स्टे ट्यून्ड टू द फजल 97.1 FM। हम बस यूं गए और यूं आए।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slusser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slusser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slusser. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
6: Radio Bazaar 97.1 FM.
7: Hit music. Back to back.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सभी सुनते हुए समातों को खुश आमदीद। सीरियल लिसनर्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट, आप सभी की दोस्त आरजे ज़ैनब फातिमा, और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम दीवा डायलॉग, सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 87.1 FM पे। सो दिल से एक बार फिर से आप सभी को बताते चलती हूँ कि 01157100971 ये है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। सो ना सिर्फ ये एक नंबर है, बल्कि ये नंबर एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा पाथ क्रिएट करता है जिसके थ्रू आप हम तक पहुँच सकते हैं। सो इस नंबर के थ्रू आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपनी कीमती राय, आप आज के दिन के हवाले से क्या सोच रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, कुछ आपको बॉदर कर रहा है, सो वो तमाम तरह चीज़ें आप हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम बरबर कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए हर दिन लेकर आए कुछ नया, कुछ अलग, कुछ मुनफरिद, साथ ही साथ हम आपकी तमाम तरह क्यूरीज को भी फुलफिल करें। साथ ही साथ आप सभी को बताते चलती हूँ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है radiofaza.co.uk। सो वेल लिसनर्स, इस वेबसाइट के थ्रू ना सिर्फ आप हमें ट्यून कर सकते हैं, बल्कि आप जान सकते हैं हर तरह की मालूमात जो जुड़ी है रेडियो फजा 87.1 FM से रिलेटेड। सो अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ है दमदार और आप अपनी आवाज़ का जादू जगा सकते हैं, सो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल टीम से, लेकिन उसके लिए हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट पर ही मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बहुत अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस मिले, जहां आप बिना किसी इंटरप्शन के हमें आसानी ट्यून कर सकें, सो उसके लिए आपको इंस्टॉल करना होगा हमारी एप्लीकेशन को। सो हमारी एप्लीकेशन है रेडियो फजा 97.1 FM, जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं आसानी गूगल स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से। सो अगर आप हैं एप्पल यूज़र तो सिंपली आपको जाना होगा एप्पल स्टोर, और अगर आप हैं एंड्रॉयड यूज़र तो सिंपली आपको जाना होगा गूगल स्टोर। वहां जाके आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM, और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आने वाली पहली एप्लीकेशन जिसका आइकन है पर्पल कलर का, आपने बस कर लेना है उसको इंस्टॉल, और इंस्टॉल करने के बाद बस आपने शामिल हो जाना है हमारी इस फैमिली में। सो वेल लिसनर्स, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, और हमारा आज का टॉपिक आजकल की सोसाइटी से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रहा है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को अब इट्स 2026 पे बेहद लोग मकबूल कर रहे हैं, जहाँ ये कॉन्सेप्ट अगर हम कुछ सालों पहले देखें तो बहुत कम हुआ करता था, लोग इस चीज़ की तरफ इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आज अगर आप कहीं पर भी देखेंगे तो आपको जगह जगह एंटरप्रेन्योरशिप नज़र आएगी। सो वेल लिसनर, जैसे ही जब कभी हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो अक्सर हमारे माइंड में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक फैंसी ऑफिस या फिर कोई बड़ा सेटअप आता है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है। दर हकीकत एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है एक आइडिया जिसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसे रियलिटी में कन्वर्ट किया जाए, साथ ही साथ आप उसके अंदर शामिल होने वाली हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, और उस आइडिया को आप एक क्रिएटिव तरीके से, एक मीनिंगफुल वे में लोगों के साथ शेयर करें। सो दिस इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन कभी भी एक स्मॉल आइडिया नहीं, मतलब मज़े की बात यह है कि आज आपको जो बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर नज़र आ रहे हैं, या फिर आपको बहुत सारे आइडियाज़ सोसाइटी में दिख रहे हैं, सो ऐसा नहीं है कि ये वो तमाम तरह आइडियाज़ हैं जिन्हें लोगों ने एक बहुत बड़े स्टार्टअप से स्टार्ट किया था। दर हकीकत इन आइडियाज़ को लोगों ने छोटे सेटअप से स्टार्ट किया था। सो हर बड़ा बिजनेस किसी एक ज़माने में एक स्मॉल आइडिया था, जिसे आइडेंटिफाई किया गया, आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उस पर प्रोसेस किया गया, और फिर प्रोसेस करने के बाद ही जाकर एक स्मॉल सेटअप बन जाता है एक बहुत बड़ा बिजनेस। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है। सो सिंपल वर्ड में अगर हम समझे, एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो किसी अपॉर्चुनिटी या फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, उसका सोल्यूशन बिजनेस की फॉर्म में डेवलप करता है। सो ये वो लोग होते हैं जिनको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अब आपके साथ एक सिंपल सी शॉर्ट सी एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। अक्सर अवकात आप नोटिस करते होंगे कि आपके एरिया में हेल्दी होम मेड फूड इजिली अवेलेबल नहीं। आप सोचते हैं वाई नॉट कि मैं होम मेड हेल्दी मील प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दूं। सो आप घर से ही एक छोटा सेटअप स्टार्ट करते हैं, जहां आप कुछ डिशेस बनाते हैं, अपनी हल्की सी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस स्टार्ट करते हैं। यहां से एक बिजनेस आइडिया स्टार्ट हो सकता है।
सो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी फैंसी रेस्टोरेंट को हायर करें या फिर आप एक बहुत बड़ी टीम हायर करें, आप जस्ट अपने घर से भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सो आप स्मॉल बिजनेस के लिए सोशल मीडिया पोस्ट और रील बनाना शुरू कर सकते हैं, ये भी एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हमेशा मिलियन डॉलर कंपनीज हरगिज़ नहीं होता, कभी कभी एक स्मॉल होम बेस्ड बिजनेस भी एंटरप्रेन्योरशिप बन सकता है। सो दिस इज द ऑफिशियल एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो मेरे लिसनर्स, इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद बहुत सारी गपशप करेंगे, लेकिन अभी प्रोग्राम में हमें मौसूल हुई है एक बहुत ही खूबसूरत सी फरमाइश। सो इस खूबसूरत से ट्रैक को हम शामिल करते हैं और आप इस खूबसूरत से ट्रैक को इन्जॉय करें और ट्रैक के उस पर अगेन कंटिन्यू करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस, इन दोनों में आखिर क्या डिफरेंस होता है।

लिसनर्स, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को जो कि है अब हम बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेस एक्सेल में इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब आप सबसे एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, क्या एंटरप्रेन्योर और बिजनेस सेम होते हैं या नहीं। वेल, आपके ओपिनियन में आपको क्या लगता है कि ये दोनों चीज़ें सेम हैं या डिफरेंट, आप ही शेयर कर सकते हैं अपना ओपिनियन हमसे थ्रू दिस नंबर जो कि है 0115710091। सो अब सबसे पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ, दोनों रिलेटेडली एक दूसरे से मैच करते हैं लेकिन ये दोनों कभी भी एग्जैक्टली सेम नहीं होते। अच्छा, जहाँ हम बात करते हैं बिजनेसमैन, सो बिजनेसमैन जनरली एक एग्जिस्टिंग बिजनेस मोड को ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। यानी कि एक बिजनेस जो पहले से चल रहा है, ऑटोमेटिकली आपको मालूम है कि ये किस चीज़ को प्रोडक्ट कर रहा है, इसकी प्रोडक्शन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन एंटरप्रेन्योर अक्सर किसी न्यू आइडिया, अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट, सर्विस या फिर मेथड को डेवलप करने का नाम है। सो माइट बी पॉसिबल कि एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता लेकिन वो एक बहुत अच्छी बिजनेस एम्पायर को चला सकता है। सो ये एक सिंपल सा छोटा सा शॉर्ट सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब मैं आपसे इसकी एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। सो बेसिकली एक पर्सन रेस्टोरेंट ओपन करता है और ट्रेडिशनल मेन्यू ऑफर करता है, जबकि एक दूसरा पर्सन जो कि एक यूनिक फूड कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाता है लेकिन ऑर्डरिंग सिस्टम डेवलप करता है और कस्टमर एक्सपीरियंस को भी कम्प्लीटली डिफरेंट बनाता है। सो अब आपके ख्याल में इन दोनों में से बिजनेस कौन सा है और एंटरप्रेन्योरशिप कौन सी है। अब आपको लगेगा कि ये दोनों तो बिजनेस कर रहे हैं लेकिन द माइट बी डिफरेंस इज कि जो फर्स्ट वन है वो जस्ट सिंपली आपको एक बिजनेस मॉडल दे रहा है जहां आपको रूटीन की चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन जो सेकंड पर्सन है उसने कुछ नया, कुछ अलग, कुछ मुनफरिद इंट्रोड्यूस करवाया है जिसकी वजह से आपको इनोवेशन मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, साथ ही साथ आपको क्रिएटिविटी मिल रही है। सो अब आपको उम्मीद करती हूँ कि अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा कि बिजनेस क्या होता है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। सो अब बात कर लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होनी चाहिए। सो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में वो तमाम तरह क्वालिटीज होनी चाहिए जिनकी वजह से वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। सो सबसे पहले क्रिएटिविटी। अच्छा, एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम्स को डिफरेंट एंगल से देखते हैं हमेशा। जहां दूसरे लोग कहते हैं कि यह पॉसिबल नहीं, एंटरप्रेन्योर सोचते हैं कि इसे पॉसिबल बनाने के लिए कोई ना कोई इकदाम किए जाए। सो फर्स्ट थिंग इज कि आपको क्रिएटिव होना चाहिए। अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप न्यू आइडियाज सोच सकते हैं, आप किसी भी जगह से किसी भी चीज से एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वेल, जो करंट सिचुएशन चल रही है, इट्स 2026, तो आजकल के दौर में मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि मार्केट में वही लोग कामयाब होते हैं जो इनोवेशन लेकर आते हैं, जो कुछ क्रिएटिव करके दिखाते हैं, क्योंकि मार्केट में इस वक्त कंपटीशन बेहद हाई है। सो बहुत सारी कंपनीज मौजूद हैं जो कि सिमिलर प्रोडक्ट्स जनरेट कर रही हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक कामयाब बिजनेसमैन बने, सो द फर्स्ट थिंग यू हैव इज कि आपके पास डिफरेंट आइडियाज होना चाहिए। आपको यह मालूम होना चाहिए कि अच्छा मार्केट में कौन कौन सी चीजें करंटली वर्क कर रही हैं और आपको कुछ ऐसा डेवलप करना चाहिए जो इससे पहले मार्केट में बहुत कम लोगों के पास हो। सो दैट इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो करेगा एंड दैट्स द ओनली रीजन जिसकी वजह से आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी क्वालिटी की जानिब। सो सेकंड थिंग जो बेहद जरूरी है आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, वो है रिस्क टेकिंग। सो बिजनेस में अनसर्टेनिटी अक्सर औकात होती रहती है लेकिन इसका मतलब हर किसी नहीं कि एंटरप्रेन्योर ब्लाइंडली रिस्क ले। स्मार्ट एंटरप्रेन्योर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, मार्केट को समझते हैं और फिर डिसीजन करते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आप भरपूर रिसर्च करते हैं लेकिन फिर भी आपकी वो रिसर्च उस तरह से नहीं चलती। सो इसके लिए अगर आप रिस्क टेकिंग बन सकते हैं या फिर आपको लगता है कि आप कोई भी लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, सो इस सूरत में आप एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लेते तब तक आप कुछ नया, कुछ अलग, कुछ मुनफरिद नहीं कर पाते। आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनके पास आइडियाज़ तो होते हैं लेकिन वो इस चीज़ से डरते हैं कि हो सकता है कि अगर वो कुछ नया, कुछ अलग, कुछ मुनफरिद स्टार्ट करते हैं, मार्केट उस चीज़ को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगी और उनका बिजनेस नहीं चल सकेगा। लेकिन जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप
एक नया स्टेप फॉलो नहीं कर सकते। सो आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी क्वालिटी की, जो कि बेहद ज़रूरी है आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए। सो वो है कॉन्फिडेंस। अगर आपको अपने आइडिया पर कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि आप जो सोच रहे हैं आप उसे एक अमली शक्ल दे सकते हैं, तभी आप बन सकते हैं एक एंटरप्रेन्योर। लेकिन अगर आपको सेल्फ डाउट है, आपको लगता है कि ये चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही, तो उस सूरत में आप कभी भी एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। सो फर्स्ट आपको खुद पर एतमाद होना चाहिए, खुद के आइडियाज़ पर और किस तरह से आप उनको एक अमली शक्ल पहना सकते हैं।

अब बात कर लेते हैं अगली क्वालिटी की, विच इज एडेप्टेबिलिटी। सो मार्केट चेंज अक्सर औकात होती रहती है। सो आजकल अगर मैं आपसे करंट सिचुएशन शेयर करती हूँ, सो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ हम बात करते हैं मार्केटिंग की, एचआर की और भी बहुत सारी चीज़ों की। सो मार्केटिंग में ये चीज़ आती है कि करंट सिचुएशन में और प्रीवियस सिचुएशन में काफ़ी हद तक चेंज आता रहता है। सो हो सकता है कि आप एक आइडिया सोचते हैं, आप उसको एक अमली शक्ल पहनाते हैं, लेकिन आपको साथ ही साथ ये चीज़ भी मेक श्योर करना ज़रूरी है कि क्या आपका प्रोडक्ट करंट सिचुएशन में चल रहा है, और आइंदा अगर सिचुएशन चेंज हो जाती है, मार्केट ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, तो क्या उस सूरत में भी आपका प्रोडक्ट उस तरह से ग्रो करेगा या नहीं। सो वही लोग एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, जो कि मार्केट जब भी चेंज होती है, कस्टमर की प्रेफरेंस बदल जाती है, तो वो खुद को उस तब्दीली के मुताबिक ढाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो एक एंटरप्रेन्योर क्या काम करता है, उसे लर्न करता है और फिर अडॉप्ट करता है अपने बिजनेस के अंदर। एंड द लास्ट क्वालिटी जो कि आपको बनाती है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, वो है पेशेंस। क्योंकि बिजनेस कभी भी ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं बनते, कभी सेल्स लो हो जाती हैं, तो कभी कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, कभी हो सकता है कि आपने जिस तरह से चीज़ें प्लान की हों उस तरह से ना हो, तो इन तमाम तरह की सिचुएशंस में आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है कि आप एक अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के तौर पर अगर कुछ आपके मुताबिक नहीं होता तो आप पेशेंस से काम लें। सो एंटरप्रेन्योर को सीखना होता है कि फेलियर को फीडबैक कभी भी उसे मुतासर नहीं करता। सो दे लिसनर्स, दीज आर द सम क्वालिटीज जो कि आपको बनाएंगी एक बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। और वैसे भी जो करंट सिचुएशन चल रही है, मैं आप सभी को यही प्रेफर करती हूँ कि गेट सम न्यू आइडियाज़, और आप कोशिश यही करेंगे आप खुद का एक बिजनेस एम्पायर बनाएं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है। सो इन तमाम सिचुएशन की वजह से मे बी यू डोंट गेट योर परफेक्ट जॉब। सो इसी के लिए आज हमने इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की। वेल, अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अदद खूबसूरत सा ट्रैक का। सो हम शामिल करते हैं एक अदद खूबसूरत सा ट्रैक। सो ट्रैक की उस पार होती है आपसे मुलाकात, एंड अगेन फिर दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये गपशप का सिलसिला तो चलता रहेगा। फिलहाल के लिए सुनते हैं ये ट्रैक।

वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी सुनते हुए समातों को खुश आमदीद। तो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम थीवा डायलॉग और मैं हूँ आपकी मेज़बान सैनब फातमा। तो लिसनर्स, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अभी प्रोग्राम में वक्त हो चुका है अगले सेगमेंट की जानेब बढ़ने का, जहाँ हम हर दिन बात करते हैं न्यू रेसिपीज़ की, चटपटे तीखे खानों की। तो आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए द स्पाइस किचन में कुछ इसी तरह की मज़ेदार से लाजवाब से रेसिपीज़। सबसे

चलिए बात करते हैं हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी की, जो कि है बेहद मज़ेदार। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि मैंने सोचा कि कल हमने थोड़ा सा सिंपल और देसी खाना ट्राई किया था, तो आज क्यों ना हम कुछ अलग थोड़ा सा डिफरेंट वे में कोई न्यू रेसिपी ट्राई करें। सो इसके लिए आज हम बनाएंगे चीज़ी चिकन टॉर्टिला पॉकेट्स। सो आई नो आपको नाम सुन के लग रहा होगा कि ये रेसिपी तो काफ़ी मुश्किल है, बट ऑनेस्टली ये बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रेसिपी है किस तरह की। सो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है, चीज़ी है चिकन कि इसके अंदर फिलिंग होगी, और आप इसे एज अ इवनिंग स्नैक भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो लंच या फिर डिनर में भी एज अ स्टार्टर बना के रख सकते हैं। सबसे पहले शेयर करती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स आप सभी के साथ। सो जल्दी से हमारी जितने भी डिवाइस हैं जो कि इस वक्त मुझे ट्यून कर रही हैं, आप अपनी नोटबुक डायरी कॉपी पेंसिल रेडी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। सो आराम आराम से शेयर करती हूँ ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो जाए। सो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमें दरकार, चिकन बोनलेस 250 ग्राम्स, टॉर्टिला रैप 4 अदद, अनियन 1 से 2 अदद, कैप्सिकम 1 स्मॉल छोटे साइज का, गार्लिक 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1.5 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, मायोनीज 2 टेबलस्पून, केचप 1 टेबलस्पून, मोज़रेला चीज़ 1 कप, साथ ही साथ कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून और फ्रेश कोरिएंडर 2 टेबलस्पून। सो वेल लिसनर्स, ये थे वो सभी इंग्रेडिएंट्स जिनकी मदद से आज हम बनाएंगे इस मज़ेदार सी रेसिपी को। आई होप आप सबने इन इंग्रेडिएंट्स को कर लिया होगा नोट, लेकिन अगर फिर भी आपसे कोई इंग्रेडिएंट हो चुका है मिस तो आप बता सकते हैं, मैं आप सभी के लिए दोबारा से उसे रिपीट कर दूंगी। वेल मैसेज पे भी आपको रिप्लाई कर दूंगी। सो उसके लिए 01157100971 आपने बस इस नंबर को सेव करके रखना है। सो वेल लिसनर्स, जितनी देर में आप अपने किचन में जाकर ये चेक करते हैं कि ये तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स क्या आपके पास मौजूद हैं घर पर या नहीं, उतनी देर में हम सुन लेते हैं एक अदद खूबसूरत सा ट्रैक। सो ट्रैक के उस पार मैं आपसे शेयर करूंगी फुल रेसिपी। सो स्टे ट्यून्ड टू द फजा 97.1 FM। हम बस यूं गए और यूं आए।

सो वेल लिसनर्स, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं मेथड की जानिब। सो सबसे पहले हम एक पैन में कुकिंग ऑयल को कर लेंगे अच्छे से गर्म। गर्म करने के बाद उसमें शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ ही साथ प्याज और हल्का सा इन्हें सौटे कर लेंगे। फिर इसमें शामिल कर देंगे बोनलेस चिकन। चिकन शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसे कुक कर लेंगे। याद रखिएगा कि जब आपके चिकन का कलर हल्का हल्का सा चेंज होना शुरू हो जाए तो इस मोमेंट में आपने शामिल करना है नमक, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर और साथ ही साथ चिली फ्लेक्स। इन तमाम तर स्पाइसेस को ऐड करें। ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लें। आप कैप्सिकम, सोया सॉस, केचप इन तीनों को शामिल करके 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएं। गैस को बंद कर दें और मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा होने दें। सो अब आपकी जो ये मिक्सचर है ये हाफ काइंड ऑफ तैयार हो चुका है। सो अब हम क्या करेंगे, एक टोर्टिला रैप लेंगे, इसको सेंटर में चिकन फिलिंग ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ऊपर से इसे कट करके बंद कर देंगे। सो आप उसको क्लोज करने के लिए इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं मोज़रेला चीज़। रैप के पॉकेट की तरह फोल्ड कर लेंगे और पैन को हल्का सा ग्रीस करेंगे और इन्हीं तमाम तर पॉकेट्स को दोनों साइड से अच्छी तरह से पका लेंगे। आपने याद रखना है कि आपने इन्हें हल्का सा पकाना है, इतना पकाना है कि वो हल्के से सॉटे हो जाए, कलर ब्राउन हो जाए। लेकिन अगर आप ज़्यादा इन पॉकेट्स को कुक करेंगे तो इस सूरत में जलने का भी चांस है। सो आपने बिल्कुल भी ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि फिलिंग को आपने ऑलरेडी कुक कर लिया है। आपने जस्ट हल्का सा क्रिस्प और गोल्डन कलर लेकर आना है। सो वेल लिसनर्स, इसी तरह से 10 से लेकर 15 मिनट में आपकी ये रेसिपी हो जाएगी तैयार, जो कि है चीज़ी चिकन टॉर्टिला पॉकेट्स। ये थी हमारी रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और देखा आप सबने के नाम से लग रहा था कि मे बी ये रेसिपी बहुत मुश्किल होगी, डिफ़िकल्ट होगी, बट ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, इजी टू मेक है। आप चटपट कभी भी कहीं भी इसे बना सकते हैं। सो जल्दी से इसे तैयार कीजिए। तैयार करने के बाद आप इसे गार्लिक मयो के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चाहें तो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वेल अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कोई स्पेसिफिक सॉस रेसिपी, सो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते थे। यह है हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लाजमी ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं आज की सेकंड रेसिपी की। सो जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर दिन कुछ चटपटा, कुछ तीखा और फिर उसके बाद बनाते हैं कुछ चॉकलेटी, कुछ रिच, कुछ स्वीट, कुछ मीठा। सो अब हमारी जो सेकेंड रेसिपी है यानी कि मीठा, आज की सेकेंड रेसिपी है चॉकलेट बिस्किट पुडिंग। इसके लिए ओवन की भी ज़रूरत नहीं, इंग्रेडिएंट्स भी बेहद आसान हैं। सो सबसे पहले मैं आपसे शेयर कर देती हूँ इंग्रेडिएंट्स। सो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए चॉकलेट बिस्किट्स 2 पैकेट, मिल्क 1 से 2 कप, शुगर 3 टेबलस्पून, कोको पाउडर 2 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर 2 to 3 टेबलस्पून, चॉकलेट 1.5 कप, वनीला एसेंस 1.5 टीस्पून, फ्रेश क्रीम 1.5 कप, चॉकलेट चिप बिस्किट्स 2 टेबलस्पून। आपने क्या करना है, अच्छी तरह से उसे क्रश करके रखना है, ठीक है, और जस्ट आपने चॉकलेट चिप्स को इस्तेमाल करना है। सो दे लिसनर्स, ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक। ट्रैक है हमारे पास फिलहाल हसन रहीम की आवाज़ में। सो इस ट्रैक को शामिल करते हैं और आप भी आइए मिलकर सुनते हैं ये ट्रैक। ट्रैक इस बार होती है आपसे मुलाकात, ट्रैक है हमारे पास वीकेंड का, क्योंकि हमारा हर प्रोग्राम अधूरा रहता है जब तक हम प्रोग्राम में कोई भी वीकेंड का गाना शामिल ना करें। सो वीकेंड के गाने मुझे भी बेहद पसंद हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे एडिक्टिव लगते हैं, लेकिन मज़े की बात यह होती है कि काफ़ी एनर्जेटिक भी होते हैं। सो सुनते हैं ये ट्रैक। ट्रैक के उस पार आपसे शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी।

0: बहाने कर रहे हैं।
1: भाई
0: मैं एक बात बताऊँ, इनको ना निकाल के घसीट के ही लाना
2: पड़ेगा।
0: बट साहब बस चले, मैं तो

So, well, listeners, welcome back. उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस खूबसूरत से ट्रैक को एंजॉय किया होगा. वेल, ये वो तमाम तरह गाने थे जो आपने ही हमें सजेस्ट किए हैं, यानी कि हमारे लिसनर्स की रिकमेंडेशन. सो मैंने भरपूर कोशिश की कि आपकी तमाम तरह रिकमेंडेशंस को आज ही के प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में से किसी की सॉन्ग रिकमेंडेशन को हमने प्रोग्राम में शामिल नहीं किया, सो आप हमें दोबारा भी बता सकते हैं, हम उसे अगेन ज़रूर शामिल करेंगे. So, listeners, जैसे के साथ ही आज के दीवा डायलॉग का ये वक्त हुआ जाता है खत्म. आई नो आप सब सोच रहे होंगे कि आज की एक रेसिपी हमने कंप्लीट कर ली, बट स्टिल वन लेफ्ट. सो उसके लिए कल सबसे पहले जैसे ही हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो मैं आपसे शेयर कर दूंगी वो रेसिपी, क्योंकि अभी हमारे पास है प्रोग्राम के लिए बहुत ही कम वक्त. सो इसके लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और याद रखना है कि प्रोग्राम खत्म होने जा रहा है, लेकिन आपके लिए एक भरपूर एक नया दिन अभी बाकी है. सो आपने पूरी कोशिश यही करनी है कि आपने खुद को एक सक्सेसफुल इंसान बनाना है, और साथ ही साथ ये कि आपने हर दिन अपने वक्त का एहसास करना है, क्योंकि जो लोग अपने वक्त की कदर करते हैं वो ज़िंदगी में कभी भी नाकाम नहीं होते. सो एक कामयाब बिजनेसमैन, एक कामयाब एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एक कामयाब एंटरप्रेन्योर आप तभी बन सकते हैं जब आप अपने वक्त की कदर करेंगे, आप क्रिएटिविटी को फोकस करेंगे और आप इस चीज़ को फोकस करेंगे कि आपने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से इम्प्रूव करना है, किस तरह से बेटर बनाना है. वेल, इसी के साथ ही मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने से जुड़े उन लोगों का भी जिनकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी से मुंसलिक है. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. वेल लिसनर्स, जाते जाते आप सभी के लिए एक खूबसूरत सा ट्रैक प्ले कर देती हूँ, सो आप इस खूबसूरत से ट्रैक को एंजॉय करें. टेक केयर, बाय बाय.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention!
3: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: airport transfer, or vehicle rental, Rosid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
0: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

0: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूँ कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए।
0: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
0: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम, या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
2: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
0: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
0: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
3: गेट रेडी टू मूव, इट्स ऑल अबाउट द बीट।
4: वाओ एफएम, ओनली ट्यून सुपर हिट चैनल,
5: सेज ऑन 97.1 एफएम।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-0792।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: It's music never sounded better.
8: Fazan 97.1 FM.
9: I love it.

ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद, आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 और यह है आपका अपना प्रोग्राम आफ्टरनून मिक्स। दोपहर अपने उरूज से जरा आगे निकल चुकी है, घड़ी तकरीबन ढाई बजने वाले हैं और दिन अभी बाकी है, काम भी बाकी है, बातें भी बाकी हैं, मुलाकातें भी बाकी हैं और शायद किसी के दिल में छुपी हुई कोई बात भी बाकी है। तो जहां के भी आप वक्त मौजूद हैं, घर में, दफ्तर में, गाड़ी में, काम पर, सफर में, ये शायद खिड़की के पास बैठकर एक कप चाय के साथ आफ्टरनून मिक्स में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान और अगले कुछ वक्त के लिए कोशिश होगी यही आपकी दोपहर थोड़ी सी हल्की, थोड़ी सी खूबसूरत, थोड़ी सी मालूमाती और ज़रा सी रोमानवी भी हो जाए। देखिए दोपहर का अपना एक मिजाज होता है, सुबह में जल्दी होती है, सुबह का इंसान कहता है चलो जल्दी करो, देर हो रही है, रात में सुकून होता है, लेकिन दोपहर दोपहर शायद दिन का वो हिस्सा है जहां इंसान थोड़ा सा सांस देता है, काम के दरमियान एक वक्फा, चाय का एक कप या मोबाइल पर दो चार पैगाम और अगर रेडियो साथ हो तो फिर क्या कहने। इसीलिए तो नाम है आफ्टरनून मिक्स, यहां एक मौसम पर पूरा प्रोग्राम नहीं चलता, यहां जिंदगी की तरह चीजें बदलती रहती हैं, कभी मौसम, कभी यादें, कभी सेहत, कभी मोहब्बत, कभी कोई दिलचस्प बात और कभी कोई सवाल और कभी कोई ऐसा गाना जो अचानक आपको कई साल पीछे ले जाए। वैसे आज तारीख पर भी नजर डालिए, 30 सितंबर 19 सितंबर का आखिरी दिन, कल 1 अक्टूबर, कितनी जल्दी गुजर गए ने चंद महीने। ऐसा लगता है अभी तो गर्मी शुरू हुई थी, फिर मौसम बदला, सुबह कुछ नरम हुई, शामें कुछ ठंडी हुई और अब अक्टूबर दरवाजे पर खड़ा है। अक्टूबर की अपनी एक खूबसूरती है, ना गर्मी अपनी पूरी शिद्दत में, ना सर्दी अभी पूरी तरह आई है, मौसम जैसे कह रहा हूँ जरा ठहरो अभी मैं एहतदाल में हूँ। और शायद यही मौसम हमें सिखाता है कि जिंदगी में हर चीज़ शिद्दत से नहीं होनी चाहिए, कभी कभी एहतदाल भी खूबसूरत होता है। और चूंकि आज का आफ्टरनून मिक्स नॉटिंघम से आप तक पहुँच रहा है तो नॉटिंघम का मौसम का जिक्र कैसे ना हो, यहाँ मौसम बदलने के साथ हवा में भी फर्क महसूस होने लगा है, सुबह और दोपहर के दर्जा हरारत में फ़र्क है, कभी बादल, कभी धूप और कभी अचानक हल्की सी बारिश, यही तो बर्तानिया के मौसम की अपनी कहानी है। आपने छतरी घर में छोड़ी, मौसम ने कहा कि आप देखो और जिसने छतरी साथ दिया उस दिन धूप निकले, यह भी नॉटिंघम के मौसम की अपनी एक शरारत है। लेकिन खूबसूरती भी यही है, आसमान का रंग बदलता रहता है, बादल आते हैं, धूप निकलती है, हवा चलती है और शहर अपनी रफ्तार से चलता रहता है। अब आफ्टरनून मिक्स को है तो जरा सा रोमांस तो बनता है, रोमांस का मतलब हमेशा मोहब्बत की बड़ी बड़ी दस्तानें नहीं होती, कभी रोमांस ये होता है कि आप किसी मसरूफ दोपहर अपने खास किसी शख्स को याद कर लें, कभी किसी का एक छोटा सा मैसेज पूरा दिन अच्छा बना देता है, कभी किसी की आवाज़ सुनकर दिल कहता है कि

आप दिन बेहतर है, और कभी किसी की याद बगैर इजाजत आती है, ना वक्त देखती है ना जगह, बस आ जाती है। आप काम कर रहे होते हैं और अचानक कोई पुरानी बात याद आ जाती है, आप मुस्कुरा देते हैं और सामने बैठा शख्स पूछता है क्या हुआ, आप कहते हैं कुछ नहीं, हालांकि बहुत कुछ हो चुका होता है। चलिए एक काम करते हैं, अगर आप इस वक्त चाय पी रहे हैं तो एक घूंट चाय कर लीजिए, और अगर चाय नहीं है तो कोई बात नहीं, पानी पी लीजिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है और जिसम को नज़रअंदाज करना भी मुनासिब नहीं है। अक्टूबर शुरू होने वाला है, मौसम निस्बतन ठंडा हो गया तो बाज़ लोगों को प्यास कम महसूस होगी, लेकिन पानी की ज़रूरत ख़त्म नहीं होती। नींद पूरी रखिए, खाने में तवाज़ुन रखिए, बाहर के बहुत ज़्यादा तले हुए खानों से परहेज़ कीजिए, और सबसे बढ़कर अगर तबीयत ख़राब है तो इसे मुसलसल नज़रअंदाज ना करें, छोटी सी एहतियात बड़ी परेशानी से बचा सकती है। अब आफ्टरनून में मिक्स में एक वक्त है खूबसूरत म्यूज़िक का, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि वापस आकर बात होगी बुध के दिन की, बुध आखिर इतना ख़ास क्यों महसूस होता है, और कभी कभी आपने महसूस किया कि हफ्ते के दरमियान इंसान अचानक थकने क्यों लगता है, ये बात करेंगे इसी रेडियो पर, इसी फ्रिक्वेंसी पर। और

वापस आ गए हैं, और अगर आप अभी भी हमारे साथ शामिल हुए हैं तो वेलकम आफ्टरनून मिक्स। ये बुध है 30 सितंबर और कल अक्टूबर शुरू होने वाला है, तो आज का दिन ज़रा ख़ास है। बुध हफ्ते का दरमियानी दिन होता है। बुध को मैं हमेशा एक दिलचस्प दिन समझता हूँ क्योंकि पीर गुजर गया, मंगल भी गुजर गया, जुम्मा की खुशबू आने लगती है और इंसान कहता है चलो बस आधा हफ्ता तो निकल गया। लेकिन यही बुध हमें एक छोटी सी याद दहानी भी कराता है कि आप अभी भी अपने हफ्ते को बेहतर बना सकते हैं। अगर पीर खराब गुजरा था कोई मसाला नहीं, अगर मंगल मसरूफ था तो कोई मसाला नहीं, बुध को दोबारा शुरू किया जा सकता है। जिंदगी में भी ऐसा ही है, कभी पीर अच्छा नहीं गुजरता, कभी मंगल, कभी पूरा महीना, लेकिन अगला दिन हमेशा एक मौका लेकर आता है। अब आपकी बारी, हम जानना चाहते हैं आपके लिए बुध का दिन कैसा होता है, क्या बुध आपके लिए मसरूफ तरीन दिन होता है, क्या आप बुध को आराम करना पसंद करते हैं या आपके लिए बुध एक आम दिन है। और एक सवाल जरा मुख्तलिफ सा, अगर आपको आज दोपहर किसी एक खास शख्स के साथ बैठकर चाय पीने का मौका मिले तो वो कौन होगा? नाम बताना जरूरी नहीं, बस इतना बताइए कि वो शख्स आपके लिए खास क्यों है। ये है आफ्टरनून मिक्स। हाँ, बात सिर्फ हमारी नहीं होती, यहां आपकी कहानी भी शामिल होती है। और अब अक्टूबर इज लोडिंग, सिर्फ एक दिन बाद नया महीना। कुछ लोग नए महीने के आगाज़ पर नए गोल्स बनाते हैं, कोई कहता है जिम शुरू करूंगा, कोई कहता है वेट कम करूंगा, कोई कहता है कि मोबाइल कम इस्तेमाल करूंगा, कोई कहता है इस महीने ज़्यादा काम करना है, और कोई खामोशी से बस ये सोचता है अल्लाह करिए महीना सुकून वाला। और सच पूछें तो कभी कभी यही सबसे खूबसूरत ख्वाहिश होती है, सुकून। ना बहुत कुछ चाहिए, ना बहुत बड़ी कामयाबी, बस घर में सुकून हो, दिल में सुकून हो, सेहत अच्छी हो, अपने लोग करीब हो और अल्लाह राज़ी हो जाए। कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिन्हें हम रोज़ाना बात नहीं करते, रोज़ाना मिलते नहीं हैं, शायद महीनों में बात ना होती हो लेकिन दिल में उनकी जगह वही रहती है। ज़िंदगी मसरूफ़ हो जाती है, लोग बदल जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं, लेकिन कुछ यादें वो कहीं नहीं जाती। और कभी कभी एक मौसम, एक खुशबू, एक गाना, एक जगह, एक तारीख और इंसान के जहन में वही शख्स दोबारा आ जाता है। यही तो ज़िंदगी है। कुछ लोग हमारे साथ रहते हैं, कुछ लोग हमारी यादों में। तो अब इस खूबसूरत दोपहर को मजीद खूबसूरत करते हैं। आवाज़ों का सफ़र जारी रहेगा, यादों का सफ़र जारी रहेगा और आफ्टरनून मिक्स भी जारी रहेगा। आप रेडियो फ़ज़ा FM 97.1 सुन रहे हैं। एक बार फिर सेहत की तरफ जाते हैं, सेहत के मौजू की तरफ। मौसम बदलते वक्त चंद बुनियादी बातें याद रखें, अपने कपड़े मौसम के मुताबिक रखें, सुबह और रात की ठंड को नज़रअंदाज हरगिज न कीजिए, पानी पीते रहें, अपनी नींद पूरी कर लें। अगर नज़ला, खांसी, बुखार जैसी अलामत मुसलसल हैं तो मुनासिब तिबी मशवरा हासिल करें। ख़ासतौर पर बच्चों और बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए। और एक खूबसूरत बात, सेहत सिर्फ बीमारी ना होने का नाम नहीं है, सेहत ये भी है कि आप सुकून से सो सकें, सुबह ताज़ा दम उठ सकें और दिल खोल कर हंस सकें, अपने लोगों के साथ वक्त गुजार सकें। तो मेरे अजीज़ सामीन, दोपहर के वक्त गुजरता जा रहा है, घड़ी आगे बढ़ रही है, 30 सितंबर भी अपने अख्तिताम की तरफ बढ़ा और कल नया महीना, नया सफ़ा, नई तारीख। लेकिन रेडियो फ़ज़ा पर कहानियाँ वहीं रहेंगी, आपकी आवाज़ें, आपके पैगाम, आपकी पसंद के गाने, आपकी फरमाइश और ये खूबसूरत सा साथ, यही तो रेडियो की असल खूबसूरती। आप हमें देख नहीं रहे लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के करीब हैं, एक आवाज़ और दूसरी तरफ एक सुनने वाला दिल, बस यही ताल्लुक रेडियो को खूबसूरत बनाता है। और आफ्टरनून मिक्स अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो बस हमारी आज की महफिल के एक हिस्सा था बुध की इस खूबसूरत दोपहर में। नॉटी गेम्स से रेडियो फ़ज़ा FM 97.1 पर मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान, और आप हैं मेरे साथ। तो जहां भी रहिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मौसम बदल रहा है इसलिए सेहत का भी ख्याल रखिए। और हाँ, अक्टूबर आ रहा है, देखते हैं अक्टूबर हमारे लिए क्या क्या लेकर आता है, नई खुशियां, नई मुलाकातें, नई कामयाबियां या शायद कोई ऐसी खूबसूरत याद जिसका मैं अभी इल्म ही नहीं।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का। Hit music, entertainment, poetry, news and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.

नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती नहीं।

वेलकम बैक। अच्छा जी, घड़ी ने 3 बजा दिए और 3 बजते आफ्टरनून मिक्स एक नए घंटे में दाखिल हो गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद आप जहां के भी हैं। अगर आप अभी भी रेडियो ऑन किया है तो खुश आमदीद, अगर पिछले घंटे से हमारे साथ हैं तो आपका खास शुक्रिया कि आपने इस दोपहर का कुछ वक्त हमारे नाम किया। नॉटिंघम की ये दोपहर 30 सितंबर है और हमें आपके साथ रेडियो फजा 97.1 पर। मैं हूं हुज़ैफ़ा हैदर। अगला एक घंटा जरा मुख्तलिफ अंदाज में गुजारने की कोशिश करते हैं, ना कोई लंबी तकरीर ना कोई बहुत भारी मौजू, बस जिंदगी की बातें, वही बातें जो हम रोज देखते हैं महसूस करते हैं लेकिन कभी रुक कर उनके बारे में सोचते नहीं हैं। देखिए, हमारी ज़िंदगी में एक अजीब सी जल्दी आ गई। सुबह आँख खुली नहीं कि मोबाइल हाथ में, फिर काम, फिर मैसेजेस, फिर फ़ोन कॉल्स, फिर सोशल मीडिया, फिर किसी का जवाब देना, फिर किसी को जवाब ना देने की वजाहत देना, और पता चलता है कि दिन गुजर गया। कभी कभी इंसान रात को बिस्तर पर लेट कर सोचता है कि आज मैंने पूरा दिन क्या किया, और जवाब इतना वाजी नहीं होता कि काम बहुत किए होते हैं लेकिन सुकून वो शायद कहीं रास्ते में रह गया होता है। तो कभी कभी ज़िंदगी से कुछ देर के लिए कुछ मांगना नहीं चाहिए, बस बैठ जाएँ, खिड़की से बाहर देखें, शायद सामने रखें, रेडियो चलाएं और कुछ देर कुछ ना करें। यह भी ज़रूरी है कि हर लम्हा प्रोडक्टिव होना ज़रूरी नहीं, हर वक्त कुछ अचीव करना ज़रूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ सांस लेना भी काफ़ी है। वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जब आपको पूरा एक घंटा मिल जाए जिसमें कोई काम ना हो तो आप क्या करते हैं? कुछ लोग फ़ौरन कहते हैं कि मैं सो जाऊँगा, कुछ कहेंगे फिल्म देखूँगा, कुछ चाय कहेंगे चाय पीऊँगा और कुछ मोबाइल खोलेंगे, और कुछ लोग शायद किसी खास शख्स को फ़ोन करेंगे जिससे काफ़ी दिनों से बात नहीं है। आप क्या करेंगे सोचिएगा, और अगर दिल करे तो हमें बताइएगा, क्योंकि आफ्टरनून मिक्स पर सवाल भी हमारे हैं और जवाब भी आपके। पर एक बहुत दिलचस्प बात है कि हम लोग अक्सर खुशी को बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं। हम कहते हैं कि जब पैसे ज़्यादा होंगे तो खुश होंगे, जब अपना घर होगा तो खुश होंगे, जब ये काम हो जाएगा तो सुकून मिलेगा, जब वो शख्स वापस आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी खुशी बहुत छोटी होती है। गर्म चाय, पसंदीदा गाना, किसी दोस्त का अचानक फ़ोन, अम्मी का पूछ लेना खाना खाया, अबू का खामोशी से आपके लिए कुछ ले आना, किसी बच्चे का आपको देख कर मुस्कुरा देना, बारिश के बाद साफ आसमान या गाड़ी चलाते हुए अचानक अपना पसंदीदा गाना आ जाना, बस ये तो ज़िंदगी। हम बड़ी खुशियों के इंतज़ार में छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और अब इसी बात पर एक गाना तो बनता है क्योंकि कुछ एहसास बोल कर मुकम्मल नहीं होते, कुछ एहसास मौसीकी खुद बयान कर देती है। तो आप जहाँ हैं वहीं रहें, वॉल्यूम ज़रा सा मुनासिब कीजिए और इस खूबसूरत गाने के साथ आफ्टरनून मिक्स को आगे बढ़ाइए। आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM।

0: वह कुछ गाने ऐसे होते हैं ना कि ख़त्म हो जाए तो फ़ौरन अगला गाना सुनने का दिल ही नहीं करता, बस दो लम्हे खामोश रहने का दिल करता है। और शायद इसीलिए नहीं कि गाना बहुत उदास था, बल्कि इसलिए कि इसने कोई ऐसी बात याद दिला दी जिसे हम भूलने की कोशिश कर रहे थे। मौसीकी की यही तो अजीब ताकत है, एक धुन है और इंसान कहीं का कहीं पहुंच जाता है, किसी पुरानी सड़क पर, किसी पुराने कमरे में, किसी पुराने दोस्त के पास, या शायद किसी ऐसे शख्स के पास जिससे अब बात नहीं होती। वैसे नॉटिंघम की बात करें तो मुझे एक चीज़ हमेशा दिलचस्प लगती है, शहर अपनी रफ्तार से चल रहा होता है, लोग अपने काम में मसरूफ़ हैं, कोई बस पकड़ने के लिए जल्दी में, कोई काम से वापस जा रहा है, कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई कॉफ़ी लिए जा रहा है, और हर शख्स के पास अपनी एक कहानी है। हम सड़क पर किसी को देखते हैं तो बस एक चेहरा नज़र आता है, लेकिन हकीकत में उस शख्स की अपनी पूरी दुनिया होती है। किसी के घर में खुशी होगी, किसी के घर में परेशानी, कोई किसी के जवाब का इंतज़ार कर रहा होगा, कोई किसी को याद कर रहा होगा, कोई अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा होगा, शायद कोई ऐसा भी हो जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा हो लेकिन अंदर से सिर्फ ये चाहता हो कि कोई इससे पूछ ले कि भाई सब ठीक है। तो लोगों के साथ नरमी रखिए, अपने आप को मालूम नहीं होता कि सामने वाला किस कैफियत से गुजर रहा है। कभी किसी को ख़ास महसूस करवाया है, मसलन आपको मालूम है किसी को चाय पसंद है, आप उसके आने से पहले चाय बना दे, या कोई बहुत बड़ा काम नहीं है लेकिन सामने वाला सोचता है कि अच्छा मैं किसी को मेरी पसंद का ख्याल है, किसी दोस्त को अचानक मैसेज कर देना, बस ऐसे ही याद है, उम्मीद है ठीक हो, किसी बहन को अपना ख्याल रखना, किसी भाई को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, छोटे जुमले होते हैं लेकिन रिश्ते इन्हीं छोटी चीज़ों से ज़िंदा रहते हैं। हम अक्सर बड़े ओकेजन का इंतज़ार करते हैं, मैसेज आएगा तो बर्थडे आएगी तो मिलेंगे, ईद आएगी तो कोई खास मौका होगा तो बात करेंगे, लेकिन मोहब्बत को कहीं इनकी ज़रूरत नहीं होती। कभी आम दिन में भी किसी को याद कर लिया करें, आज बुध है, कोई ख़ास दिन नहीं तो इसीलिए शायद आज किसी को याद करने का बेहतरीन दिन है। और आप ज़रा अपने लिए एक छोटा सा वक्त निकालिए, एक मिनट निकालिए, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो बिल्कुल तवज्जो सड़क पर रखिए, लेकिन अगर आप आराम से बैठे हैं तो सिर्फ एक मिनट के लिए अपने जहन को खामोश करें, जो हो गया उसे भी एक तरफ रखते हैं, जो होना है उसे भी एक तरफ रखते हैं, बस ये लम्हा, ये दोपहर, ये आवाज़, ये सांस और ये एहसास कि मैं अभी यहाँ हूँ। कभी कभी ये एहसास काफ़ी होता है कि हम कल के बारे में इतना सोचते हैं कि आज को जीना भूल जाते हैं, और फिर कल भी आता है और हम फिर अगले कल के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, ज़िंदगी मुसलसल अगले दिन में ना गुजारें, कभी कभी आज में भी। और ये बात मैं शायद खास तौर पर आज के नौजवानों से कहूंगा कि मोबाइल बुरी चीज़ नहीं है लेकिन मोबाइल का हर वक्त साथ रहना भी ज़रूरी नहीं। कभी नोटिफिकेशन देखें, कभी मैसेज देख कर जवाब 5 मिनट बाद दें, कभी सोशल मीडिया से बाहर भी दुनिया को देखें, कभी किसी दोस्त के साथ बैठकर वाकई बात करें, सिर्फ चैट ना करें, किसी बुजुर्ग के पास बैठे उनकी बातें सुने, क्योंकि सोशल मीडिया पर हज़ारों लोग आपको फॉलो कर सकते हैं लेकिन घर में बैठा एक शख्स शायद सिर्फ आपके 5 मिनट चाहता हो। एक वक्त था जब लोगों के पास चीज़ें कम थी लेकिन शायद वक्त ज़्यादा था, अब चीज़ें ज़्यादा हैं लेकिन वक्त कम है। पहले लोग मिलने जाते थे, अब कभी मिलते हैं लेकिन लिखकर बात ख़त्म हो जाती है, पहले तस्वीरें कम बनती थी लेकिन यादें ज़्यादा बनती हैं, अब तस्वीरें हज़ारों हैं लेकिन कभी कभी बैठ कर देखें तो सोचते हैं कि तस्वीर कब की है, और सामने बैठा शख्स कहता है पता नहीं शायद हमें दोबारा थोड़ा सा सादा होना चाहिए। हर चीज़ रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं, किस लम्हे बस जीने के लिए होते हैं, कुछ बातें बस याद रखने के लिए होती हैं। वापस सवाल, अगर आपको अपनी ज़िंदगी का एक दिन दोबारा जीने का मौका मिले तो वो कौन सा दिन होगा? कोई बचपन का दिन, कोई ईद, कोई दोस्तों के साथ गुजरा हुआ दिन, शायद शादी का दिन या कॉलेज का दिन, या शायद कोई बहुत आम सा दिन जिसकी इस वक्त कदर नहीं थी लेकिन आज याद आता है तो दिल कहता है काश वो वक्त वापस आ जाए। ये सवाल ज़रा दिल वाला है, सोच कर जवाब दीजिएगा। अच्छा जी, देखते देखते 3 बजने के बाद भी वक्त की तेज़ी से निकल रही है, तो मसला है वक्त का, कभी ऐलान नहीं करता कि देखो मैं जा रहा हूँ, बस खामोशी से गुजरता रहता है, और फिर हम किसी दिन पीछे देखते हैं तो कहते हैं अरे इतना वक्त गुजर भी गया। इसलिए शायद ज़िंदगी का बेहतरीन तरीका यही है कि जो लम्हा हाथ में उसे ख़राब ना करें, अगर खुश हैं तो खुशी महसूस करें, अगर किसी के साथ हैं तो वाकई उसके साथ रहें, अगर किसी से मोहब्बत है उसे महसूस होने दें, अगर किसी नाराज़ हैं तो सोचें कि कब तक, अगर कोई मौका मिला है तो किसी के काम आने का तो उसे जाने ना दें। अब मेरे ख्याल में इस खूबसूरत गुफ्तगू के बाद एक और छोटा सा म्यूजिक ब्रेक बनता है, आपके पैगामात हमारे साथ आ रहे हैं, आपकी फरमाइशें भी, और आफ्टरनून मिक्स अभी जारी है। मैं हूँ ज़फ़ेदर, आप सुन रहे हैं रेडियो फ़ज़ा FM 97.1 नॉटिंघम, और ये दोपहर अभी ख़त्म नहीं हुई तो कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं इसी माइक पर, इसी आवाज़ के साथ और एक बिल्कुल नए मौजू के साथ। सुनते रहिए फ़ज़ा 97.1 FM।
1: अगर हमारी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी,
2: अगर तुम मर भी गई ना तो शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा।

वेलकम बैक। देखें, जिंदगी हमेशा हमारे प्लान के मुताबिक नहीं चलती। हम कुछ और चाहते हैं, होता कुछ और है। हम किसी को अपने साथ रखना चाहते हैं, वो चला जाता है। हम किसी जगह पहुंचना चाहते हैं, रास्ता बदल जाता है। हम किसी काम को कामयाब समझ रहे होते हैं, वो नाकाम हो जाता है। इस वक्त इंसान को लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन कई साल बाद पीछे देखें तो शायद समझ आता है कि अच्छा, इस वक्त जो हुआ था वो शायद वो किसी और वजह से हुआ था। इसलिए हर बंद दरवाजे को बदकिस्मती न समझें। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं कि आपको किसी दूसरे दरवाजे तक पहुंचना होता है। अच्छा जी, जरा मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त कहाँ हैं? नॉटिंघम में, डर्बी में, या बर्मिंघम में, या लंदन में, या दुनिया के किसी और कोने में? अगर आप पाकिस्तान में बैठकर सुन रहे हैं तो वहाँ पे भी क्या माहौल है? कोई चाय पी रहा है, कोई काम कर रहा है, कौन गाड़ी चला रहा है, कौन हमारी आवाज़ सुनकर मुस्कुरा रहा है, कौन ऐसा है जो कह रहा है यार बातें तो बहुत कर रहे हो? तो भाई आफ्टरनून मिक्स है, यहाँ बातें ही तो होंगी, गाना भी आएगा और आपकी फरमाइशें भी आएंगी और हम भी बोलते रहेंगे। अच्छा, अब वक्त है भी देखते रहें, क्योंकि रेडियो का वक्त भी अजीब चीज़ है। माइक पर बैठे तो लगता है कि अभी शुरू किया था। क्लॉक कहती है कि जनाब काफ़ी वक्त गुजर चुका है, लेकिन यही तो खूबसूरती है। वक्त का गुजरना बुरा नहीं है, बस शर्त है कि वक्त के साथ हमारी ज़िंदगी भी आगे बढ़ी हो। कल से कुछ बेहतर हो, आज से कुछ समझदार, कल से कुछ तरह, आज से कुछ ज़्यादा शुक्रगुजार, बस इतना काफ़ी है। हमें हर दिन अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं, कभी सिर्फ अपना रवैया बदल लेते हैं और पूरी ज़िंदगी बदलने लगती है। और अब मेरे ख्याल में एक और खूबसूरत म्यूजिक ब्रेक का वक्त हो गया। आपने हमारी बातें सुनी, हमने आपके दिल की बातें की, अब जरा मौसीकी को भी बोलने देते हैं। आफ्टरनून मिक्स में इस दोपहर में आपके साथ नॉटिंघम में मैं हूँ ज़ाफ़र हैदर। कहीं मत जाइएगा, गाने के बाद फिर मुलाकात होगी, फिर देखते हैं अगली बात कहाँ से निकलती है, क्योंकि रेडियो पर कभी भी कोई भी बात कहीं से शुरू हो सकती है जो पहले से लिखी हुई नहीं होती। लेकिन खैर, सुनिएगा और सर दुनिएगा, सुनते रहिए फजा 97.1 FM।

वापस आ गए और यही तो मजा है आफ्टरनून मिक्स का, बात चलती रहती है एक मौजू से दूसरा मौजू, एक ख्याल से दूसरा ख्याल और वक्त पता ही नहीं चलने देता। तो आज की इस दोपहर से बस एक चीज साथ लेकर जाइए, अपनी जिंदगी को सिर्फ गुजारें नहीं महसूस भी करें, किसी को अंसा दें, किसी को फोन कर लें, अपने लिए कुछ वक्त निकालें, अपने ख्वाब को याद करें। अगर जिंदगी इस वक्त मुश्किल है तो खुद से बस इतना कहें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि वक्त किसी एक हालत में हमेशा नहीं रहता। आज अगर धूप है तो कल बादल हो सकते हैं, अगर आज बादल हैं तो कल धूप निकल सकती है, बस सफर जारी रहना चाहिए। और हाँ, अपने दिल को बहुत सख्त मत बनाइए, दुनिया पहले ही बहुत सख्त है। आप किसी के लिए आसानी बने, आप किसी के लिए वो शख्स बने जो किसी से बात करके दिल हल्का हो जाए, आप किसी के लिए वो दोस्त बने जो मुश्किल वक्त में गायब ना हो, आप किसी के लिए वो औलाद बने जिसे देखकर वालिदैन कहें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी औलाद हमारे लिए सुकून है, और सबसे बढ़कर अपने रब से ताल्लुक मजबूत रखें, क्योंकि दुनिया के सब रास्ते कभी ना कभी थका देते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ जाने वाला रास्ता इंसान को अंदर से मजबूत करता है। तो जनाब, ये घंटा भी तकरीबन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, 3 बजे से हमने कितनी बातें कर ली, देखते देखते वक्त निकल गया, लेकिन आफ्टरनून मिक्स का

अच्छा जी, आप जरा मुस्कुरा दीजिए कि हाँ वाकई अगर आप अकेले बैठे हैं तो भी, क्योंकि कभी भी इंसान को किसी वजह के बगैर भी मुस्कुराना चाहिए, और मुस्कुराहट के पीछे कोई जोक जरूरी नहीं। कभी सिर्फ इसलिए मुस्कुराएं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आज यहाँ हूँ, आज का दिन मिला, सांस पी ली, अपने लोग मिले, और एक दिन जिंदगी का मजीद देखने को मिला, ये कम नहीं है। और अब आफ्टरनून मिक्स का इस हिस्से को एक खूबसूरत मौसीकी के साथ आगे बढ़ाते हैं। ये आखिरी गाना सिर्फ गाना नहीं है, आज की पूरी महफिल का एक छोटा सा एहसास समझ लीजिए। तो वॉल्यूम ज़रा मुनासिब रखिए उस गाने के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, सुनिएगा गाना और सर दुनिएगा, सुनते रहिए फजा 97.1 FM।

अब तो अमजद जुदाई के उस मोड़ तक दर्द की धुंध है और कुछ भी नहीं, जाने मन अब दिल लौटने के नहीं। छोड़िए अब वो किस्सा पुराना हुआ, वो जो उलझा था वैसी हवा से कभी, उस दिए को मुझे तो जमाना हो।

जाने से पहले सिर्फ एक बात, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे नफ़रतों में मत गुजारें। जो मोहब्बत करनी है कर दें, जो शुक्रिया अदा करना है कर दें। किसी के साथ इखलास के साथ पेश आना है, उसके साथ इखलास के साथ पेश आइए। जो शुक्रिया अदा करना है कर दें, जिसका हाल पूछना है पूछ लें, जिसकी मदद करनी है उसकी मदद कर दें, और जो नेकी करने का मौका मिल रहा है उसे कल पर मत छोड़ें, क्योंकि हमें नहीं मालूम अगला कल हमारे लिए क्या लेकर आएगा। और शायद सबसे खूबसूरत बात यही है कि इंसान हर दिन ये सोच कर गुजारे कि आज मैं किसी के लिए आसानी बनूंगा। अगर हमने ये काम सीख लिया तो शायद हमारी अपनी ज़िंदगी में भी कुछ ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। एक मुख्तसर सी दुआ के साथ, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके घरों में सुकून दे, आपके रिस्क में बरकत दे, जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, और जो लोग किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं अल्लाह उनके लिए रास्ते आसान कर दे। तो मेरे बहुत ही प्यारे सामीन, मैं था आपका होस्ट, आपका मेज़बान, और आप सुन रहे थे आफ्टरनून मिक्स रेडियो फ़ज़ा FM 97.1 नॉटिंघम से। आपके लिए आपके साथ आज की महफिल है ही मुकम्मल करते हैं, लेकिन याद रखिए रेडियो की दुनिया में अलविदा हमेशा के लिए नहीं होता, ये सिर्फ इतना होता है कि अभी के लिए इजाज़त, फिर किसी और दिन किसी और वक्त किसी और मौजू के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, नर्म दिली से पेश आइए, और जहां मुमकिन हो किसी के लिए आसानी पैदा कीजिए। मैं था आपका होस्ट, आपका मेज़बान, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ रेडियो फ़ज़ा FM 97.1 नॉटिंघम पे। ये था आपका अपना शो आफ्टरनून मिक्स। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, और बहुत सारा प्यार, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 011591682311। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: Music never sounded better.
8: Fazan 97.1 FM.
9: I love it.
10: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
2: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ?

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM,
1: आई लव इट.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: ठहरिए जरा ये कमर्शियल तो सुन ले.
6: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
7: ओए खुशियां मनाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ
8: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं. खैर तो है,
7: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी.
8: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया.
7: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी.
8: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है.
7: AMH सॉलिसिटर्स. और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने.
8: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा.
7: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम.
8: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए. नंबर क्या है?
7: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677. प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी.
9: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम, खुश आमदेद, जी आयानो, सत बिस्मिल्ला, बखैर रागले, अस्ता लवेस्ता, आओ गाना दिल तराशे। उम्मीदवासी के जनाब, जो जहाँ जिस हाल में होगा खुशबाश होगा और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन बनाने की तगदों में मशगूल होगा। बेहद शुक्रिया आप तमाम दर समातों का जिन्होंने फ़ज़ा 97.1 FM को ट्यून प्लस चूज़ कर रखा है। आप लोग मुझे लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू सुन रहे हैं, एप्लीकेशन पर सुन रहे हैं या फिर टैब पर सुन रहे हैं, जहाँ पर भी मुझे सुन रहे हैं अपने होने का एहसास मुझे दिलाइएगा। मुझे बताइएगा कि आप फलां इब्ने फलां फलां जगह से मुझे सुन रहे हैं। मुझे कहते हैं जनाब उस्मान खान और प्रोग्राम को कहते हैं ड्राइव टाइम। यकीनन ये टाइम जो है ये ड्राइव का ही होता है। कुछ लोग इस वक्त अपने ऑफिस से घर की तरफ रवाना होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी सेकेंड शिफ्ट के लिए जा रहे होंगे, कुछ दुकान पे बैठे मुझे सुन रहे हैं और कुछ घरों में मुझे सुन रहे होंगे। अलगर्ज कोई भी कहीं भी मुझे सुन रहा है, बेहद शुक्रिया आपका कि आपने फजा 97.1 FM को ट्यून किया। तो अगर आप मुझे ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं तो आप मुझे फजा डैप पर भी सुन सकते हैं। समीन, चार दिन की ज़िंदगी और इस ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने की तगदों में हम न जाने कितना वक्त गुजार देते हैं और यही सोचते रहते हैं कि हमेशा आज जो था वो गुजर गया है, अब कल जो होगा वो बेहतर होगा। इस बेहतरी की तलाश में न जाने कितने लोग कहीं से कहीं पहुंच गए, कुछ कामयाब हुए, कुछ नाकाम हुए, कुछ किसी के काम आए और कुछ कभी किसी के काम ना आए। अलगर्ज कोई भी कहीं भी किसी भी हाल में है लेकिन मौजूद है। मौजूदगी के इस तासुर को लम्हा कहते हैं और लम्हा बलम्हा जिंदगी खूबसूरत हो सकती है अगर आप इस लम्हे की एक कदर को जान लेंगे। कोशिश कीजिए क्योंकि एक एक लम्हा आपको पता है कि जिंदगी में कीमती है और ये आपने बचपन से अब तक सुना होगा। हमारे बड़े बूढ़े ये बात कह गए हैं कि ज़िंदगी का एक एक लम्हा कीमती है, उस एक एक लम्हे में पूरी पूरी ज़िंदगी समा चुकी है। सो अपने इन तमाम तर लम्हात को खूबसूरत बनाइएगा क्योंकि इनको खूबसूरत बनाना आपके अपने हाथ में है। कुदरत ने आपको इतनी ताकत दे रखी है कि आप खुद इसको खूबसूरत बना सकते हैं, बशर्ते आप बनाना चाहें तो। लेकिन आजकल जिस तरह का टॉक्सिक माहौल चल रहा है, इसमें हम खुद पर क्या किसी अपनी ज़िंदगी के एक लम्हे पर भी तवज्जो नहीं दे पाते। हमारी ज़िंदगी में इतने काम काज हैं, इतनी मसरूफियात हो चुकी हैं कि लगता है कभी कभार तो हम इंसान ही नहीं हैं बल्कि हम एक रिबोट हैं और रिबोटिक लाइफ ही जी रहे हैं। रूटीन में सुबह उठना, वही काम काज, वही ऑफिस, वही वापसी, उसी तरह से जिस्म थका हुआ, सोचे न जाने कहाँ से कहाँ रवा दवा है, कुछ समझ नहीं आता। बहरहाल सियाने कहा करते हैं कि जिंदगी का नाम गुजर जाना है और इसने गुजर ही जाना है। ये हम पर मुनहसर है कि हम इसे हंस कर गुजारते हैं या फिर रोकर। ये बड़ी खूबसूरत है अगर इसे खूबसूरत समझा जाए तो। सो आज के प्रोग्राम में जो दो घंटे हम और आप साथ रहने वाले हैं, एक एक लम्हा कीमती है। सो आइए इन दो घंटों में एक एक लम्हे को जिए। ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं तो आपसे कहना चाहूंगा बहुत ही एहतियात से ड्राइव कीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। अगर किसी परेशानी की हालत में है, गुस्से की हालत में है या डिप्रेशन में है, कोशिश कीजिएगा ड्राइव मत करें, और अगर करनी भी है तो इतनी आहिस्ता करेंगे किसी का या अपना कोई नुकसान ना कर बैठे। अगर रेडियो की ट्रांसमिशन आप तक नहीं ठीक से पहुंच पा रही तो आप लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू मुझे सुन सकते हैं। उसके लिए गूगल पर जाइएगा और जहाँ पर लिखिएगा radiofaza.co.uk। आने वाली पहली वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा और रेडियो को लाइव सुन लीजिएगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। तो
रेडियो फजा 97.1 FM के नाम से प्ले स्टोर एप्पल स्टोर दोनों जगह पे आपको ये खूबसूरत सी एप्लीकेशन मिल जाएगी। और अगर गाड़ी में मुझे सुन रहे हैं तो आप डैब पर मुझे ट्यून कर सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होकर अपने होने का एहसास मुझे दिलाना चाहें तो बहुत ही आसान सा तरीकाकार है। मेरे तमाम तर पुराने लिसनर्स को तो मालूम होगा, लेकिन जो आज पहली बार मेरे साथ शामिल हुए हैं आपको बताते चले, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोग्राम का हिस्सा भी बने। प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए ज़रूरी है प्रोग्राम में शामिल होना।

0: और वर्जना वंस अगेन वेलकम बैक आ चुके हैं वापस इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं। बेहद शुक्रिया आप तमाम तर समातों का जिन्होंने फजा 97.1 FM को ट्यून किया। आज का जो हमारा मौजूद गुफ्तगू है वो है जनाब कुछ लम्हे अपने नाम भी। सुने जाने वाले मौजूद मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके, चाहे कहीं भी हैं आप, गाड़ी चला रहे हैं, काम से वापस आ रहे हैं, घर के कामों में मसरूफ हैं, दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे हैं या शायद बस में हैं, खामोशी से बैठे हैं और रेडियो सुन रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि ये जो वक्त है ना, ये आज आप ही का है। बेहद शुक्रिया आप तमाम तर समातों का फजा 97.1 FM को सुनने का। मैं आपके साथ आपका मेजबान, आपका होस्ट, आपका दोस्त आरसे उस्मान खान, जिन्होंने आज का ड्राइव टाइम थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि आज हम किसी एक मौजू को पकड़ कर नहीं बैठने वाले। आज हम छोटी छोटी बातों पर बात करने वाले हैं और ये हमारे आपके दरमियान एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक आ रही है तो पहले इसको सुन लेते हैं।
1: Commercial time.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: यू आर प्लेइंग फजान 97.1 FM।

वेलकम बैक आ चुके हैं वापस उस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं। मुझे कहते हैं जनाब उस्मान खान और आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड आल्सो डैब। जैसे कि मैंने आपसे बेटा कहा कि आज हम किसी एक मौजू को पकड़ कर नहीं बैठने वाले, बल्कि हम बात करने वाले हैं छोटी छोटी चीज़ों की, उन चीज़ों की जिन्हें हम रोज़ देखते हैं मगर कभी महसूस नहीं करते। जैसे कि कोई एक पुरानी आवाज़, एक मखसूस खुशबू, किसी का अचानक से फ़ोन का आ जाना, राह चलते किसी अजनबी की मुस्कुराहट, अपने घर पहुंचने के बाद दरवाज़ा खोलने पर एक खूबसूरत सी स्माइल और एक अनजाना सा सुकून, और वो चंद मिनट जब इंसान दुनिया से थोड़ा सा दूर होकर सिर्फ अपने साथ बैठता है। सो तैयार रहिए जनाब, क्योंकि आज का ड्राइव टाइम शायद आपको हंसाए भी और किसी पुरानी याद में भी ले जाए, और मुमकिन है किसी लम्हे आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि मैं अपने लिए आखिर कब बैठा था। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद हम जब वापस आए हैं तो अब म्यूजिक को भी हम साथ साथ शामिल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के, क्यों ना कुछ थोड़ी सी गपशप हो जाए, और इस छोटी सी गपशप में एक छोटी सी गेम भी हो जाए तो क्या ख्याल है। वल जनाब गेम बहुत ही आसान है, आपने सिर्फ अपने जहन में एक जवाब देना है। अगर आपको अपनी जिंदगी का सिर्फ एक दिन दोबारा जीने को मौका मिले तो वो कौन सा दिन होगा, सोचिएगा। जल्दी जवाब देने की कोई भी नहीं है। क्योंकि जब कभी भी आप किसी चीज के बारे में जल्दी सोचते हैं तो पहला जवाब अक्सर दिल नहीं आपकी आदत देती है। थोड़ा सा रुक कर सोचिए कि आखिर कौन सा दिन, क्या किसी की शादी का दिन, अपने बचपन का दिन, स्कूल का पहला दिन, या फिर नौकरी का पहला दिन, दोस्तों के साथ गुजारा हुआ कोई पागलपन सा दिन, या शायद कोई ऐसा दिन जिसमें आपके वालिदैन आपके साथ थे। जरा सोचिए इस बात को, और जब तक आप सोचते हैं तब तक हम आपको खूबसूरत सा ट्रैक सुनाते हैं। उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा इस ट्रैक की, उस पार वापस लौट कर आएंगे। और फिर इसी खूबसूरत ट्रैक के उस पार इस सवाल को दोबारा उठाएंगे।

और अर्चना वन सेकंड वेलकम बैक, लौट के आ चुके हैं वापस इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं। एक खूबसूरत सा मैशअप आपने एंजॉय किया और मैशअप के उस पार वही आवाज आपके साथ जिसको कहते हैं उस्मान खान। सुन रहे 97.01 FM एंड एप के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम ड्राइव टाइम। सो इससे पहले आपसे पूछा गया था कि एक छोटी सी गेम आपके साथ खेली थी कि अगर आपको अपनी जिंदगी का सिर्फ एक दिन दोबारा जीने का मौका मिल जाए तो आप कौन सा दिन जीना चाहेंगे। तो चलिए अब थोड़ा जरा सा संजीदा हो जाते हैं। आप जानते हैं कि हम सबके पास कुछ ऐसी यादें होती हैं जिन्हें हम वापस लाना तो चाहते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हम अक्सर पूरा दिन इन्हीं चीजों को याद नहीं करते क्योंकि हमें सिर्फ छोटे छोटे लम्हे याद रहते हैं। मसलन आपको शायद याद ना हो कि 5 साल पहले एक ख़ास दिन आपने सुबह क्या खाया था, याद है 5 साल पहले, लेकिन आपको याद होगा कि उस दिन किसी ने आपको एक ख़ास बात कही थी। आपको शायद ये याद ना हो कि आप कहाँ खड़े थे, लेकिन आपको वो आवाज़ ज़रूर याद होगी। आपको शायद वो पूरा रास्ता याद ना हो, लेकिन किसी एक शख्स की हंसी तो याद होगी। प्यारे सामीन, यही तो यादों की खूबसूरती है। यादें कैलेंडर तो नहीं होती, यादें तो सिर्फ एहसास होती हैं, और कभी भी एक मामूली सी खुशबू पूरा जमाना वापस ले आती है, किसी पुराने इत्र की खुशबू, और अचानक आपको अपना स्कूल टाइम याद आ जाता है, किसी खास खाने की खुशबू, और आपको घर का वो किचन याद आ जाता है, कोई भी पुराना सा गाना, और आपको वो शख्स याद आ जाता है जिसके साथ आपने वो गाना पहली बार सुना था। यही तो वजह है कि म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं होती, म्यूजिक यादों का दरवाजा भी होती है, और शायद इसीलिए रेडियो आज भी खास है, क्योंकि रेडियो आपको सिर्फ गाना नहीं देता, रेडियो आपको एक एहसास देता है। आप गाड़ी में अकेले होते हैं, लेकिन आवाज आपके साथ साथ होती है। राज भी यही आवाज आपके साथ है जो शायद इस टाइम रोज आपके साथ हो। अच्छा चलिए काम करते हैं, आज आप जहां भी हैं अपने फोन में किसी एक ऐसे शख्स का नाम देखिए जिससे काफी अरसे से बात नहीं हुई, और फिर खुद से एक सवाल करें, अगर मैं अभी उसे सिर्फ एक लाइन का मैसेज करूं तो वो एक लाइन क्या होगी। ये जरूरी नहीं कि आप मैसेज ही करें, बस सोचें, शायद आप लिखेंगे कि कैसे हो, शायद आप ये लिख सकते हैं कि बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई, या फिर शायद सिर्फ याद आए तो सोचा पूछ लूं खैरियत है। समझ, कभी कभी ना इंसान को लंबी गुफ्तगू नहीं चाहिए होती, सिर्फ एक एहसास काफी होता है कि कोई मुझे भूला तो नहीं है। चलिए अब एक गाना तो बनता है, लेकिन गाना सुनते हुए एक बात जरूर सोचिएगा कि हम जिंदगी में बहुत कुछ जमा करते हैं, लाइक पैसा, सामान, तस्वीर, कपड़े, गाड़ियां, लेकिन आखिर में सबसे कीमती चीज क्या रह जाती है? शायद नहीं, यकीनन यादें। इसीलिए यादें बनाने में कंजूसी ना करें, किसी खास दोस्त के साथ बैठकर चाय पी लें, घर जाएं तो छोटे छोटे बच्चों के साथ जमीन पर बैठ जाएं, वालिदैन के पास 2-4-5-10 मिनट नहीं ज्यादा बैठा जाए, किसी पुराने से दोस्त को अचानक से बस फोन कर लें, बगैर किसी मकसद के गाड़ी लेकर कहीं भी निकल जाएं, किसी खूबसूरत सी जगह पर जाकर खामोश होकर बैठ जाएं। देखिए जिंदगी हर वक्त प्रोडक्टिव होने का नाम नहीं है, कभी कभी सिर्फ जिंदा होने को महसूस करना भी बड़ा जरूरी होता है। हम लोग शायद यही चीज सबसे गलती बड़ी कर जाते हैं कि हम महसूस ही नहीं करते कि हम जिंदा हैं या नहीं, बस एक रोबोटिक लाइफ को जीते जा रहे हैं। खैर, खूबसूरत सी आवाज़,
राहत फतेह अली खान और मोमिना मुस्तहसिन की कोक स्टूडियो सीजन लाइन से लिया गया खूबसूरत सा आवाज, खूबसूरत सा आवाज मासद के जाए, खूबसूरत सी आवाज, आफरी आफरी। उम्मीद है कि कोई पुरानी याद तो आएगी। जय कीजिए इस खूबसूरत सी म्यूजिक को, इस म्यूजिक को। इस बार होगी आपसे फिर से मुलाकात, रहिएगा मेरे साथ। मुझे कहते हैं उस्मान खान, आप सुन रहे हैं फजाना 97.01 FM नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम ड्राइव टाइम।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: You are playing Fazan 97.1 FM.

0: ऑलराइट, वन सेकंड, वेलकम बैक आ चुके हैं वापस लौट कर इस प्यारे से खूबसूरत सी मुशबे के उस पार। मुझे कहते हैं जनाब उस्मान खान, आप सुन रहे हैं फसा 97.1 एफएम नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम ड्राइव टाइम। बेहद शुक्रिया आप तमाम दर समातों का फसा 97.1 एफएम को ट्यून प्लस चूज करने का। ड्राइव करते हुए डैप पर मुझे सुन रहे हैं या फिर लाइव स्ट्रीमिंग की सुन रहे हैं, एप्लीकेशन तो इंस्टॉल है ना आपके पास, अगर नहीं है तो भी कर लीजिए। रेडियो फजा 97.1 एफएम के नाम से एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। प्ले स्टोर एप्पल स्टोर दोनों जगह पे अवेलेबल है, आप इसको आराम सुकून से डाउनलोड कीजिए और दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह पर आराम से बैठे इसको ट्यून करके 97.1 एफएम को आप इंजॉय कर सकते हैं। अपने किसी प्यारे दोस्त को बताना या सुनाना चाहें और सोचेगी लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू हमें सुन सकते हैं radiofaza.co.uk पर। प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो लीजिए जाने बाहर शामिल हो सकते हैं आप। उसके लिए हमारा व्हाट्सएप का नंबर है स्टूडियो का, उसको सेव कीजिएगा। जल्दी से मोबाइल फोन का डायल पैड ओपन कीजिए और नंबर को नोट कर लीजिए 01157100971। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पर जाइए और कोई भी खूबसूरत सी गजल, नज़म, चंद अशआर, कोई कोटेशन, कोई बात, कोई सलाम, कोई दुआ, कोई कहानी या किसी प्यारे से दोस्त को जो हो सुनानी उसको लेकर भेज दीजिएगा। हवा के दुश्मन लहराता गुनगुनाता सनसनाता हो आपका खूबसूरत सा पैगाम, जैसे मेरे काका कंप्यूटर की स्क्रीन पर जगमगाएगा, हजर सुनती हुई तमाम दर खूबसूरत सी समातों की नजर हो जाएगा। सो आपने बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना और एक प्यारा सा खूबसूरत सा पैगाम मुझ तक पहुंचा देना है। जब तक आप पैगाम लिखते हैं तब तक एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। क्या हुआ सामीन की, एक दफा ना एक साहब रोज दफ्तर से वापिस आते थे और घर के बाहर गाड़ी रोकते थे, फोन जेब में रखते, दरवाजा खोलते और अंदर जाते ही दोबारा फोन हाथ में ले लेते। एक दिन को छोटा सा बच्चा था उनके पास आया और पूछा कि आप जब घर आते हैं तो फोन साथ क्यों लाते हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि काम होता है। बच्चे ने कहा कि तो फिर आप घर कब आते हैं। बस ये एक लाइन थी, लेकिन कभी कभी एक बच्चे का सवाल बड़े आदमी की पूरी जिंदगी रोक देता है। हम अपने जिस्म से तो घर पहुंच जाते हैं लेकिन दिमाग अभी भी दफ्तर में होता है। हम दोस्तों के साथ बैठे होते हैं लेकिन आंख फोन पर होती है। हम खाना तो खा रहे होते हैं लेकिन जहन अगले काम में होता है। और फिर एक दिन हमें एहसास होता है कि जिंदगी तो गुजर गई, हम मौजूद ही नहीं थे। इसीलिए आज जब आप घर जाएं सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन एक तरफ रख दीजिए और जिस शख्स के सामने बैठे हैं उसकी आंखों में देखकर बात कीजिए। शायद आपको अंदाजा हो कि आपके घर में भी एक पूरी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। सो आज खुद से एक छोटा सा वादा करते हैं, कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, आज से रोज कम से कम 10 मिनट सिर्फ अपने लिए, ना फोन, ना सोशल मीडिया, ना कोई काम, ना किसी से बहस, बस 10 मिनट। और ये 10 मिनट चाय के साथ बैठिए, खिड़की से बाहर देखिए, वॉक कर लें, कागज पर कुछ लिख लें हजूर, या फिर बस खामोश रहें, क्योंकि खामोशी भी कभी कभी दिमाग की सफाई करती है। हम गाड़ी तो धोते हैं, घर साफ करते हैं, फोन की मेमोरी तक साफ करते हैं, लेकिन जहन की मेमोरी वो कब साफ करते हैं। उसमें पुराने गुस्से, पुराने दुख, पुराने झगड़े, पुराने खौफ, सब कुछ जमा होता रहता है। कभी कभी इन्हें भी डिलीट करना पड़ता है। देखिए, हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं, हर बहस जीतना भी जरूरी नहीं, हर शख्स को खुश करना भी जरूरी नहीं, और सबसे बढ़कर हर बात दिल पर लेना भी जरूरी नहीं। जल्दी से फौरन से जवाब दीजिए, मूड थोड़ा सा जरा सा हल्का करते हैं। मैं सवाल पूछूंगा, आप दिल में जवाब देंगे, चाय या कॉफी, सुबह या रात, बारिश या सर्दी, घर या सफर, दोस्त या अकेला वक्त, पुरानी फिल्म या नई फिल्म, बचपन या अब की जिंदगी, और आखिरी सवाल, पैसा या सुकून। ये वाला थोड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि ज़िंदगी में अक्सर हमें ना अक्सर दिनों में एक एक जो ख़ास चीज़ चुनने पर मजबूर कर देती है ना, सुकून होता है। लेकिन शायद असल कामयाबी ये है कि उन दिनों के दरमियान जो है तवाज़न बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी होता है, तवाज़न पैदा किया जाए। वो तवाज़न ना पैदा कैसे होगा, यही तो सोचने की बात है। सुकून आएगा कहाँ से, यही तो सोचना है। आप जानते हैं सुकून बर्बाद होने की सबसे बड़ी रीज़न क्या होती है, लोग क्या कहेंगे। एक ऐसी बात है जिसने हमारी बहुत सी जिंदगियां रोक रखी हैं, और मुझे ये छोटा सा एक जुमला, लोग क्या कहेंगे। लेकिन ताकत जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है। आप कुछ नया करना चाहते हैं, लोग क्या कहेंगे, छोड़ो नहीं होगा। आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं, बहुत लोग नाकाम हुए हैं। आप कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं इस उम्र में, आप सफर करना चाहते हैं, फजूल खर्ची है। आप खामोश रहना चाहते हैं, उसमें एटीट्यूड आ गया। आप बोलें तो मसला, ना बोलें तब भी मसला। और आप जानते हैं फिर एक वक्त आता है जब इंसान समझता है कि दुनिया को खुश करना शायद मुमकिन ही नहीं है, इसलिए अपनी जिंदगी के फैसले सिर्फ लोगों के तबसरों पर ना छोड़िएगा। देखिए मशवरा जरूर लें, ये आपका राइट है कि आप दूसरों से मशवरा लें, लेकिन अपनी जिंदगी, अपने मकसद और अपनी जिम्मेदारी को सामने रखिए, क्योंकि आखिर में जिंदगी तो यकीनन आपने गुजारनी है ना। अगर इन बातों के दरमियान अपने अंकल और आंटीज को मैं बिल्कुल नहीं भूलने वाला जनाब, प्यारे प्यारे अंकल और आंटीज के लिए खूबसूरत से 90s का
1: नहीं बन सकती, तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं।
0: प्यारा सा मैशअप लेकर आया हूं, उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा मेरे प्यारे प्यारे अंकल और आंटीज। कुछ पुरानी यादों में खो जाइए, लेकिन लौट कर जल्दी वापस आइएगा। इसके उस पार मिलते हैं, मुझे कहते हैं उस्मान खान, और आप सुन रहे हैं फजल 97.1 FM एंड आल्सो डैब प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइव टाइम।

और अर्जुना बंस अगेन वेलकम बैक, लौट कर आ चुके हैं वापस सुमित के साथ, कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं। मुझे कहते हैं उस्मान खान, आप सुन रहे हैं फजा 97.1 एफएम नॉटिंगम के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम ड्राइव टाइम। और यकीनन बहुत से लोग इस वक्त ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं, और जो लोग ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं उनसे ये कहना चाहेंगे, बी सेफ बी केयरफुल। देखिए आपने जाना तो घर ही है, और जब घर ही जाना हो तो क्यों ना थोड़े सुकून से जाया जाए। और मैं हमेशा आप लोगों से कहा करता हूँ कि जब भी आप घर की तरफ जाएं तो कोशिश करें कि आपके हाथ में कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। खाली हाथ कभी भी किसी को भी कोई भी अच्छा नहीं लगता, फिर चाहे वो आपकी फैमिली ही क्यों ना हो। कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ हाथ में ज़रूर होना चाहिए, जो घर में लेकर जाएं तो घर वाले भी खुश हो सकें। वल जनाब, आपको मेरा साथ ज़्यादा वक्त का नहीं रह गया, जो वक्त हमारे और आपके दरमियान है इन्हीं लम्हात को हम खूबसूरत बनाएंगे, और बल्कि मुझसे ज़्यादा आप खूबसूरत बनाएंगे। वो किस तरह बनाएंगे ये आप बेहतर जानते हैं। जिन लोगों ने आज पहली बार मुझे ट्यून किया, बेहद शुक्रिया आपका फजा 97.1 एफएम को ट्यून करने का। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझे अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं, चाहे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। पैगाम पहुंचाने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन का डायल पैड ओपन करना है, जो नंबर मैं आपको बताऊंगा उस नंबर को नोट कीजिएगा, सेव कीजिएगा। मेरे और आपके दरमियान खूबसूरत से रबते का जो नंबर है उसको कहते हैं 0115 7100971। इस नंबर को नोट कीजिए, सेव कीजिए, व्हाट्सएप पर जाइए। व्हाट्सएप पर जाकर कोई भी पसंदीदा कलाम, कोई खूबसूरत सा गीत, कोई खूबसूरत सी शायरी, गज़ल, नज़म, चंद अशआर, कोई कोटेशन, कोई बात, कोई सलाम, कोई दुआ, या कहीं दूर बैठे खूबसूरत से शख्स को कोई भी खूबसूरत सा पैगाम भेजना चाहें तो कासिद हाजिर है जनाब। आप भेज सकते हैं पैगाम, हवा के दोष पर लहराता गुनगुनाता सनसनाता हुआ आपका पैगाम, जैसे ही मेरे काका कंप्यूटर की स्क्रीन पर जगमगाएगा, जाने मन सुनती हुई तमाम तर खूबसूरत सी समातों की नज़र हो जाएगा। तो कोई भी प्यारा सा पैगाम मुझ तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर रेडियो की ट्रांसमिशन अब तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही तो आप लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू मेरा साथ दे सकते हैं। गूगल पर जाइएगा और जाकर लिखिएगा radiofaza.co.uk, आने वाली पहली वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा और मुझे लाइव सुन लीजिएगा। इसके अलावा हमारे तमाम आरजेस की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी, कौन सा आरजे किस टाइम पे कौन सा प्रोग्राम करता है, मुकम्मल डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और आप चाहते हैं कि रेडियो फजा आपके बिजनेस को प्रमोट करने में आपका साथ दे, सो डोंट यू वरी, आप एक खूबसूरत सा मैसेज अपने नाम के साथ छोड़ दीजिएगा, हमारी मार्केटिंग टीम आपसे खुद रब्ता कर लेगी और आपके बिजनेस को चार चांद लगाने में आपका पूरा साथ दिया जाएगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम के नाम से, प्ले स्टोर एप्पल स्टोर दोनों जगह पे अवेलेबल है। ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं तो आप हमें

ऐप पर ट्यून कर सकते हैं। ये वो तमाम तर रास्ते हैं जिन रास्तों से होकर आपने मुझ तक पहुंचना है, और जब तक आप पहुंचते हैं तब तक हम आपको सुनाते हैं एक और खूबसूरत सी आवाज। उम्मीद है कि आपके दिल के तार जरूर छेड़ेगी ये आवाज। ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए और शीशे को हल्का सा नीचे कर लीजिए। ये ठंडी ठंडी हवा आपके तमाम तर जज्बात को जगाएगी। मिलते हैं इस आवाज के उस पार, रहिएगा मेरे साथ। मुझे कहते हैं उस्मान खान, आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम ड्राइव टाइम।

ऑरिजिनल वन सेकंड वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ हैं। मुझे कहते हैं उस्मान खान और आप सुन रहे हैं 97.1 एफएम नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम ड्राइव टाइम। और अब ये ड्राइव टाइम जो है अपने अख्ताम की जाने में रवा दवा है, यानी कि आपसे इजाजत चाहने का वक्त जो है वो बिल्कुल करीब आ चुका है। और इस इजाजत को हम इतना सस्ता सा आम सा नहीं बनाएंगे, बल्कि आपको जाते हुए कोई ना कोई ऐसी सजेशन जरूर दे के जाएंगे जिसको अपना लेने से आपकी जिंदगी अगर बेहतर है तो वो मजीद बेहतरीन हो सकती है। तो तमाम तर लड़के अपने पल्ले और तमाम तर लड़कियां जो हैं वो अपने पल्लू से बांध दीजिए। जी हाँ जनाब, तमाम तर लड़कियां वो अपने पल्लू से और तमाम तर लड़के अपने पल्ले से बांध लीजिए कि जहां कहीं भी होंगे, जहां भी आप रहेंगे, जिंदगी में तमाम तर लम्हात आपके साथ रहेंगे। और इन तमाम तर लम्हात को खूबसूरत किस तरह बनाना है ये आप पर डिपेंड करता है। यूं ना हो कि कल गला जब आप बूढ़े हो जाएं तो फिर आप सोचें कि यार काश मैं ज़िंदगी को इस तरह से गुजार लेता या उस तरह से गुजार लेता। हम यही सोच सोच के अपने बहुत से कीमती लम्हात ज़िंदगी के ज़ाया कर देते हैं, लेकिन आज से हम तहैया करेंगे कि हम अपने एक लम्हे को भी ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि एक एक लम्हे को खूबसूरत बनाएंगे। प्रोग्राम के अहतमाम पे जाते हुए आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, और कोशिश करें कि आपकी वजह से दूसरे भी मुस्कुरा सकें, दूसरे भी आपकी वजह से खुश रह सकें। दूसरों को इज्जत दीजिए ताकि आपको इज्जत खुद ब खुद मिल सके। समीन वहाँ से प्यार ले लीजिएगा जहाँ पर प्यार बट रहा है, और बाखुदा वहाँ पर प्यार ज़रूर दे दीजिएगा जहाँ पर प्यार की ज़रूरत है। ज़िंदगी और सांस ने वफा की, तो आपसे मुलाकात होगी हमारी कल सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म। तब तक के लिए खूबसूरत सी आवाज़ के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। हंसते और मुस्कुराते रहिए, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपका और मेरा सबका अल्लाह निगेबान।

0: मर जागा हूँ।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
3: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
4: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
3: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
4: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
3: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
4: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
5: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152, Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106, Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
3: Park Foods, जो नाम है मायार का।
6: You are staying. We are playing Fazan 97.1 FM.

जी हाँ, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM लाइव ब्रॉडकास्ट फ्रॉम नॉटिंघम। दिस इज मी जकी खान, जिसे आप सुनते हैं हर बुध की शाम 7 से लेकर 9 बजे तक मॉडर्न सोसाइटी अनफिल्टर्ड के इस शो में। आज का हमारा उन्वान, आज का हमारा टॉपिक है उम्र, यानी कि एज। उम्र की कम से कम चार शक्लें हैं। पहली तारीखी या कैलेंडर वाली उम्र, जो हमारे कैलेंडर, जब हमारी पैदाइश होती है। दूसरी जिस्मानी उम्र, हमारा जिस्म कितना मजबूत, मुतहर्रिक या थका हुआ महसूस करता है। तीसरी जहनी और जज्बाती उम्र, हम हालात को कितनी समझदारी से देखते और संभालते हैं। और चौथी मुआशरती उम्र, यानी वो तवक्कुआत जो मुआशरा हर उम्र के साथ जोड़ देता है। यानी कि हमारे पास ये, हमारी ये चार उम्र की किस्में हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये चारों उम्रें हमेशा एक जैसी नहीं होती। एक नौजवान के कंधों पर इतनी जिम्मेदारियां हो सकती हैं कि वो अपनी उम्र से बहुत बड़ा महसूस करे, जैसे अभी अवैस ने कहा। दूसरी तरफ एक बुजुर्ग शख्स तजस्सुस, मजा और उम्मीद में बहुत से नौजवानों से आगे हो सकता है। मैं हमारे तमाम सामईन और लिसनर्स जो हैं, आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप अपनी असल उम्र कहाँ महसूस करते हैं? अपने जिस्म में, अपने जहन में या अपनी जिम्मेदारियों में? क्या आप कभी अपनी उम्र से बड़े या छोटे महसूस हुए? हमारी नज़र में मसला उम्र का नहीं है, उम्र के बारे में बनाए गए फैसलों का है। हम अक्सर किसी नौजवान से कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो,

सबसे पहले तो अपनी क्रिएटिविटी को आपने माना नहीं है, जो कि अक्सर मैं अपने शो में कहा करता हूँ कि जो इंसान है, अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया, इस दुनिया में भेजा, तो किसी न किसी खासियत के साथ भेजा है। और वो खासियत क्या है, वो हमें वक्त के साथ साथ हमें पता चलती है। या तो हमारा को बहुत करीबी जो हमें अच्छे से जानता होगा, हमारा हमदर्द होगा, वो आपको बताएगा कि भाई तुम इस चीज़ में अच्छे हो, तुम्हें ये करना चाहिए। या फिर एक उम्र के हिस्से में जाके हमें ये समझ आ जाएगी, हमें एहसास होगा कि यार यही हमारे लिए ठीक है। तो आप एक जगह टिक जाते हैं। कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि कहीं टिकते नहीं हैं, कभी एक जगह ट्राई करते हैं, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह, कभी चौथी जगह, एंड दे गो ऑन। आप भी अगर अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमसे बात करना चाहें, तो हमें कॉल कर सकते हैं। 01157100971 इज द नंबर। इसी के साथ सुनाते हैं आपको एक और खूबसूरत सा ट्रैक, और उम्मीद है आपको ये ट्रैक भी पसंद आएगा। कोशिश तो की है कि इस टॉपिक के हवाले से, आज की डिस्कशन के हवाले से, को हमें अच्छे अच्छे ट्रैक मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई इतने ज़्यादा ट्रैक्स नहीं हैं इस डिस्कशन को लेके। लेकिन हमने कोशिश की है आपके लिए पुराने गानों के रीमिक्स लेकर आए। छोटी सी उम्र में

कभी क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि छोटी सी उम्र में आपको ऐसा रोग लग गया हो कि आपको लगे कि बस अब हमारी जिंदगी खत्म, अब हमने जी कर क्या करना है। जो लोग सुसाइडल हो जाते हैं या फिर अपनी जिंदगी से तंग पड़ जाते हैं, उन्हें लगता है कि बस हमारी जिंदगी का यही मकसद था जो कि पूरा नहीं हुआ, तो चले अब अपनी लाइफ को कहते हैं अलविदा। तो अपनी जिंदगी को अलविदा कहने से पहले ये सोच लीजिए कि ये हमारे पास एक अमानत है, इसमें हम खयानत नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आ जाता है जो जबकि आपको अपनी जिंदगी के साथ प्यार होने लगता है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ? आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM लाइव ब्रॉडकास्ट फ्रॉम नॉटिंघम, दिस इज मी ज़की खान, मॉडर्न सोसाइटी अनफिल्टर्ड का ये शो आपके लिए लाते हैं हम एवरी वेडनेसडे 7 to 9 PM। आप सबसे एक सवाल है, हमारा एक सवाल है, वो ये है कि आपकी मौजूदा उम्र की सबसे खूबसूरत बात क्या है और सबसे मुश्किल बात क्या है। अपना मुख्तसर सा जवाब हमें व्हाट्सएप कीजिए 0115-7100-971 पे कि What is the best thing about your present age and what is the hardest thing about it? कि आपकी जिंदगी कहते हैं ना कि जिंदगी खूबसूरत है, खूबसूरत तभी लगने लगती है जब आपकी जिंदगी में खुशियां होती हैं, और वही जिंदगी आपको बोझ लगने लगती है, दुश्वार लगने लगती है जब आपकी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं। ऐसा ही है या फिर हमारा जायजा गलत है या फिर हम सबका जायजा गलत है? आपका तजुर्बा क्या कहता है हमसे शेयर कीजिए 0115-7100-971। चलिए जी इसी के साथ सुनाते हैं आपको एक और ट्रैक और उम्मीद है कि ये ट्रैक भी आपको पसंद आएगा। आज के हमारे ट्रैक्स बड़े ही कमाल के हैं। ट्रैक है जी जाने बहारा, पाकिस्तानी और तुर्किश म्यूजिक के रीमिक्स के साथ। कोई ऐसी जान हो जिसके आते ही आपकी जिंदगी में बहार ही बहार हो।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM लाइव ब्रॉडकास्ट फ्रॉम नॉटिंघम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग। ना सिर्फ FM पे बल्कि आप हमें अभी डैप पे भी सुन सकते हैं। ऑनलाइन सुनना चाहें तो radiofaza.co.uk इज आवर वेबसाइट और हमारी एक ऐप है रेडियो फजा की, आप उसे डाउनलोड कीजिए और उसे आप हमें उस पर भी सुन सकते हैं। वेलकम बैक, हमारा शो पिछले एक घंटे से चल रहा है और हम एंटर हो चुके हैं अपने अगले सेगमेंट की जाने, और ये सेगमेंट रहेगा शाम 9 बजे तक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मजे कर रहे होंगे अपनी जिंदगी में। अगर कोई दुख है तो उन दुखों को ये सोच कर भूल जाइए कि खुशी भी आएगी। जो कहते हैं हर रात के बाद फिर सवेरा तो ज़रूर आता है, उस सवेरे का इंतज़ार कीजिए। ज़िंदगी बस इसी तरह से चलती जाती है, सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही सारी उम्र तमाम होती है। मैं हूं आप सबका होस्ट ज़की खान, अगले प्रोग्राम लेके आता हूं एवरी वेनसडे 7 to 9 PM। हम बात कर रहे हैं आज एज के बारे में।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440 363-0063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
0: हमें लगता है कि वो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता, और जो आजकल के बच्चे हैं वो ये समझते हैं कि ये एजेड हैं, हमारे बड़े हैं इनको। तो अपने इस अगले सेगमेंट में हमें कुछ मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पे, आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। हमें एक मैसेज आया है आयशा का, वो कहती हैं कि मैं 28 साल की हूँ और मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, किसी की शादी हो गई है, कोई तरक्की कर चुकी है, किसी का नया घर बना है और मैं कंपैरिजन करती रहती हूँ अपनी लाइफ का और उनकी जिंदगी का और मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद इस दौड़ में पीछे रह गई हूँ। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी सोचती हूँ कि क्या मुझे अपनी जिंदगी को देखना चाहिए कि मेरी जिंदगी किस तरह से गुजरी, मेरा बचपन कैसा था और मेरे घर वाले कितना मुझे सपोर्ट कर पाए। तो हर एक इंसान की जिंदगी एक दूसरे से अलग होती है, इसलिए उसे नापना और तोलना नहीं चाहिए। और वो कहती हैं कि मैं ये कहना चाहूंगी कि लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ लम्हात जो हैं उन्हें देखते हैं कि वो इस वक्त खुश हैं, कामयाब हैं, शादी हो चुकी है, नया घर ले लिया, नई गाड़ी ले ली और सोशल मीडिया के ऊपर उनकी लाइफ बहुत ही चमकती हुई नज़र आ रही है मुझे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में क्या दुश्वारियां हैं मैं नहीं जानती। और दूसरी हमें एक स्टोरी शेयर की है इमरान ने, वो कहते हैं कि आई एम 52 ईयर्स ओल्ड And I want to change my career after 20 years in one field. But my worry is, my new colleagues are gonna be younger than me. Then I ask a question to myself, if I may work for another 10 years, do I want to spend them doing work I value or only work that feels familiar? इंसान को वही काम करना चाहिए जो उसका जी चाहे करने का। कहते हैं कि अपने शौक को अपना बिजनेस बना लेते हैं या अपना कैरियर बना लेते हैं तो आप उसमें यकीनन कामयाब होते हैं। उसी के साथ हमें एक और स्टोरी शेयर की है हमारे साथ मिसेस खान ने, बल्कि मिसेस खान ने नहीं की, उनके बच्चों ने की है। वो कहते हैं कि शी इज 71 ईयर्स ओल्ड, आफ्टर लूजिंग हर हस्बैंड शी फील्स आइसोलेटेड। She joins a community group, learns to use smartphone and begins volunteering once a week. Her life does not become what it was before, but it becomes purposeful again. जिंदगी के किसी मोड में भी जाके वो कहते हैं ना कि हमें एक नई जिंदगी मिल गई या हमने एक नई जिंदगी शुरू कर ली। तो अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए जहां पर आपको लगे कि अब जिंदगी खत्म हो चुकी है, तो ये समझ लीजिए कि आपकी एक नई जिंदगी आपका रास्ता देख रही है। जिस तरह कहते हैं ना कि जब सारे दर बंद हो जाते हैं तो एक दर ऐसा होता है जिसकी चाबी आपको ढूंढनी पड़ती है, वो देखना पड़ता है कि आप अपना रास्ता कैसे बनाएंगे, क्योंकि जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमें लगता है कि आज तक जो कुछ हमने किया बस यही कुछ है। जैसे मिसाल दिया जाता है ना कि कुएं के मेंढक, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी जिंदगी एक कुएं में होती है, एक वेल में, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं, वो दुनिया देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये दुनिया तो कहीं और जा रही है और मैंने तो अपना वक्त ज़ाया कर दिया। जी हाँ, वक्त ज़ाया नहीं होता, वक्त तो वक्त है, किसके लिए ठहरता है। अब इन तीनों स्टोरीज को अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें तो इसमें असल रुकावट उम्र नहीं है, रुकावट मुआजना, खौफ और दूसरों की राय थी। कभी भी उम्र हमें नहीं रोकती, उम्र के बारे में हमारा यकीन हमें रोकता है। कि अपने आप ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपना कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत से हल हैं, वो हमें ढूंढने चाहिए। आप किसी कहानी से खुद को जोड़ सकते हैं कि आपने कभी अपनी ज़िंदगी को किसी और के टाइम टेबल से नापा है, हमें पैगाम भेजिए या हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमें आप कॉल भी कर सकते हैं। नंबर हमारा वही है 01157100971। एक इंतहाई खूबसूरत सा ट्रैक आप सबको सुनाने जा रहा हूँ, और आपने इस ट्रैक की
8: हमने अदा कर दिया, हम इश्क वाले हैं मोहब्बत का तमाशा नहीं करते,
0: हम मोहब्बत वाले हैं मोहब्बत का तमाशा नहीं करते, हम इसलिए जालिम।

जी हाँ, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM लाइव ब्रॉडकास्ट फ्रॉम नॉटिंघम ऑन रेडियो फजा 97.1 FM एंड टैब। मैं हूँ जकी खान, आपके लिए लेकर आया हूँ एक प्रोग्राम। आज का हमारा टॉपिक है, हमारी डिस्कशंस हैं, एज, उम्र, जिंदगी। जिंदगी प्यार का गीत है, ये गाना सुनते हैं और उसके बाद फिर लौट कर आते हैं। प्यार का कहीं मत जाइए अब।

0: जी हाँ, ये ऐसे ही है कि जैसे हमें जीना पड़ेगा। वेलकम बैक, को एक खूबसूरत सा ट्रैक आपको सुनाया। अब बात कर रहे हैं हम आज एज पे, मॉडर्न सोसाइटी अनफिल्टर्ड के शो में हमारे तमाम सामाइन को, हमारे लिसनर्स को करते हैं खुशामदेद। उम्र का मौजू मोहब्बत, शादी, तालीम और नई शुरुआत से भी।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
0: हम अक्सर पूछते हैं इस उम्र में, यानी कि क्वेश्चन मार्क होता है, कोई भी काम करने जाते हैं, कहते हैं अब इस उम्र में करोगे, लेकिन शायद हमें पूछना चाहिए अगर फैसला जिम्मेदाराना, बाइज्जत और हकीकत पसंदीदा है तो सिर्फ उम्र उसे गलत क्यों बनाती है। नई शुरुआत का मतलब ये नहीं कि हम हकीकत को नजरअंदाज कर दें। जिस्मानी सेहत, माली सलाहियत और खानदानी जिम्मेदारियां अहम हैं, लेकिन हकीकत पसंद होना बहुत ज़रूरी है और उम्मीद छोड़ देना, क्या ये सही बात है? अच्छी मनसूबा बंदी ख्वाब को छोटा नहीं करती, उसे मुमकिन बनाती है।

और कहीं आपने देखे होंगे बहुत ही कम उम्र में होते हैं लेकिन बड़े बड़े काम करते हैं। लेकिन ये कहना दुरुस्त नहीं है कि सिर्फ उम्र एक अतद है यानी कि नंबर है। एट द सेम टाइम वी शुड अवॉइड टर्निंग एज इज जस्ट अ नंबर इनटू प्रेशर। पीपल डू नॉट हैव टू प्रूव देयर वर्थ बाय स्टेइंग कॉन्स्टेंटली प्रोडक्टिव, यूथफुल और एडवेंचरस। रेस्ट, स्लोअर लिविंग एंड चेंजिंग प्रायोरिटीज आर ऑल्सो वैलिड। वक्त के साथ साथ हमारी प्रायोरिटी चेंज होती हैं। मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, कई सालों से उनसे बात नहीं हुई। उन्होंने मैसेज किया, मैंने कहा मैं आपको कॉल बैक करूंगा, और आज उन्होंने मुझे मैसेज किया कि बदल गया इंसान। मैंने उनसे कहा कि मेरे दोस्त इंसान नहीं बदला, ये वही है, बस हालात बदल गए हैं। अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि इंसान नहीं बदलता, उसके हालात बदल जाते हैं। और कई लोगों का अगर फितरतन ही बदलना उनकी फितरत में है तो फिर आप उनको बदल भी नहीं सकते। क्या तालीम शुरू करने के लिए कभी बहुत देर हो जाती है? क्या बड़ी उम्र में साथी या मोहब्बत तलाश करने पर तनकीद होनी चाहिए? ये एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। कहते हैं कि आप इस उम्र में शादी करोगे, अगर आपके लाइफ पार्टनर आपको छोड़कर चले गए या फिर इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो क्या आप दूसरी शादी नहीं कर सकते? क्या आप खुश नहीं रह सकते? ये एक बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल सा एक टॉपिक है, इस पे भी यकीनन हम बात करेंगे। What dreams have you postponed because of your age? What would be one safe first step towards it? हाँ, यकीनन लाइफ को बिल्कुल संजीदा लेना चाहिए, लेकिन इतना भी संजीदा नहीं लेना चाहिए कि आप अपनी खुशियों को दूर छोड़ दें। किसी ने पूछा कि उम्र जो है वो जवान कैसे लगते हैं लोग अपनी उम्र से ज़्यादा, तो मैंने उनसे कहा कि क्योंकि वो अपनी लाइफ में एंटरटेनमेंट ख़त्म नहीं करते। तो अपनी लाइफ से एंटरटेनमेंट को कभी मत ख़त्म कीजिए, क्योंकि जो एंटरटेनमेंट है ये आपको जवान रखती है, है ना? चलिए जी, इसी के साथ सुनाते हैं आपको एक और खूबसूरत सा ट्रैक। आप शामिल होना चाहें प्रोग्राम में तो अभी भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0115-7100-971 पे, या हमें कॉल भी कर सकते हैं स्ट्रेट आफ्टर दिस ट्रैक। मेरे महबूब, कयामत होगी। कुछ ऐसे ख्यालात होते हैं, कुछ ऐसे एहसासात होते हैं, कुछ ऐसा वक्त हमारी ज़िंदगी में आता है, हमें लगता है कि ये कयामत है या फिर जन्नत है।

आज रुसवा ये मोहब्बत तेरी गलियों में होगी। अब तो वो ना गलियां रहीं, ना वो जमाना रहा, ना वो लोग रहे, ना वो सोच रही, ना वो हालात रहे, क्या रहा? हम वहीं के वहीं हैं, हम वहीं हैं। जी हाँ, कुछ मजी सवालात हैं आपसे ये थॉट प्रोसेस के लिए है। हमारे पास अब वक्त थोड़ा कम बचा है, इस वक्त बहुत हुआ चला जाता है। 8:44 यानी कि 8:44 हो चुके हैं और हमारा शो इख्तिताम पे पहुंच जाएगा एट 8:56। फिर कुछ एड्स होंगे और उसके बाद आपसे अलविदा मांगेंगे। सवाल ये है कि एट व्हाट एज डिड यू लर्न योर मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन? आप अपने आप से सवाल कीजिएगा कि ज़िंदगी में ऐसा कौन सा मोड़ आया जो आपको लगा कि मैंने ज़िंदगी का कोई सबक हासिल कर लिया है। विच इज़ मोर वैल्यूएबल, यूथफुल एनर्जी और लाइफ एक्सपीरियंस? ज़्यादा कीमती क्या है, जवानी की तवानाई या ज़िंदगी का तजुर्बा? What would you tell to your younger self? आप अपने कम उम्र खुद को क्या मशवरा देंगे? What do you hope your older self will thanks for you? आप आज ऐसा क्या करना चाहते हैं जिस पर मुस्तकबिल में खुद को शुक्रिया अदा करेंगे? Name or stereotype about your age group that is unfair. ये सवालात हैं जो कि आप अपने आप से कीजिए, क्योंकि इस सवालात करने से इंसान को बाज़ औक़ात ना जवाब मिल जाता है, और ऐसे जवाब मिलते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होते। दिल का क्या करें साहेब, ये तो उन्हीं पे मरता है। इसी ट्रैक के साथ मिलते हैं इस ट्रैक के बाद।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

आज रुसवा ये मोहब्बत तेरी गलियों में होगी। अब तो वो ना गलियां रही, ना वो जमाना रहा, ना वो लोग रहे, ना वो सोच रही, ना वो हालात रहे, क्या रहा? हम वहीं के वहीं हैं, हम वहीं हैं। जी हाँ, कुछ मजी सवालात हैं आपसे ये थॉट प्रोसेस के लिए है। और बस अब वक्त थोड़ा कम बचा है, इस वक्त वह चला जाता है 8:44 यानी कि 8:44 हो चुके हैं और हमारा शो इख्तिताम पे पहुंच जाएगा एट 8:56। फिर कुछ एड्स होंगे और उसके बाद आपसे अलविदा मांगेंगे। सवाल ये है कि एट व्हाट एज डिड यू लर्न योर मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन? आपको अपने आप से सवाल कीजिएगा कि जिंदगी में ऐसा कौन सा मोड़ आया जो आपको लगा कि मैंने जिंदगी का कोई सबक हासिल कर लिया है। विच इज मोर वैल्यूएबल, यूथफुल एनर्जी और लाइफ एक्सपीरियंस? ज्यादा कीमती क्या है, जवानी की तवानाई या जिंदगी का तजुर्बा? What would you tell to your younger self? आप अपने कम उम्र खुद को क्या मशवरा देंगे? What do you hope your older self will thanks for you? आप आज ऐसा क्या करना चाहते हैं जिस पर मुस्तकबिल में खुद को शुक्रिया अदा करेंगे? Name or stereotype about your age group that is unfair? ये सवालात हैं जो कि आप अपने आप से कीजिए, क्योंकि ये सवालात करने से इंसान को बाज़ औक़ात ना जवाब मिल जाता है, और ऐसे जवाब मिलते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होते। दिल का क्या करें साहेब, ये तो उन्हीं पे मरता है। इसी ट्रैक के साथ मिलते हैं इस ट्रैक के बाद।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
0: Bigger, bigger and better, better. The radio station for people who love music. 107.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: Hits. Music never sounded better.
8: Fazan 97.1 FM.
7: I love it.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: क्या आप जानते हैं मैं कौन?
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
3: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
4: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
3: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
4: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
3: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
4: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
5: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
3: Park Foods, जो नाम है मायार का।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention!
3: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.
9: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: The station that plays
2: foot tapping music.
3: Hazar 97.1 FM.
4: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े
3: पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.